0: काम कर रहा है। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों ने बताया है कि अभी 1500 से अधिक लोग लापता हैं, जिनमें कई विदेशी नागरिक शामिल हैं। लापता लोगों में 30 से अधिक देशों, मुख्य रूप से भारत, अमेरिका, मलेशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी और रूस के लोग शामिल हैं। नेपाल पुलिस ने बताया कि प्रभावित इलाकों से लगभग 1500 से अधिक लोगों को बचाया गया है, इनमें घायल लोग भी शामिल हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों के मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद के बाद प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक अहम पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में आज ही के दिन की थी। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। रक्षाबंधन का त्योहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधती हैं और उनकी खुशहाली, सेहत और समृद्धि की प्रार्थना करती हैं। भाई भी अपनी बहनों को उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने रक्षाबंधन के पर्व पर देशवासियों को बधाई दी है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ संपन्न होगी। 57 दिन तक चली यह यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी। यात्रा का समापन पवित्र गुफा मंदिर में महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में पवित्र छड़ी मुबारक के पहुंचने के साथ होगा। इस वर्ष पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से 4,80,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने ये यात्रा पूरी की है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और बिहार में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। खेलों में हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने नीदरलैंड्स के एम्स्टलवीन में 5वें स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में जर्मनी को 3-1 से हरा दिया है। वर्ष 1974 में हुए पहले विश्व कप में 4था स्थान हासिल करने के बाद ये भारतीय महिला टीम का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

আকাশবাণী কলকাতা। এখন শুনবেন রামচরিতমানস। আজ শুনবেন 216তম পর্ব।

भरत को ये प्रतीति है कि श्री राम को वनवास दिलाना काल का कुचक्र है। कैकई तो मात्र माध्यम बन गईं। उन्हें चिंता इस बात की है कि किस प्रकार श्री राम का राज्याभिषेक कराया जाए। ये सोचकर मन में आशा का संचार होता है कि श्री राम गुरु की अवज्ञा नहीं करेंगे, किंतु दूसरे ही क्षण मन में ये विचार भी आता है कि वशिष्ठ जी श्री राम की रुचि को ध्यान में रखकर ही जो कहना होगा कहेंगे। भरत स्वयं तो मात्र सेवक हैं, जिसका हठ करना भी कुकर्म होगा। जब भरत समेत सभी सभासद वशिष्ठ जी के सम्मुख उपस्थित हुए तो मुनिवर ने आशातीत कुछ भी नहीं कहा। बोले, श्री राम सत्य प्रतिज्ञ और वेदों की मर्यादा के रक्षक हैं। उनका जन्म जगत के कल्याण के लिए हुआ है। नीति, प्रेम, परमार्थ तथा स्वार्थ को उनसे अधिक कोई नहीं जानता। वो जो भी कर रहे हैं उसके लिए उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, चंद्र, दिक्पाल, माया, जीव सभी की आज्ञा प्राप्त है। अतः उनकी रुचि जानकर ही कुछ कहने में सबका हित होगा।

0: लुप्तजनानां सूचना प्रदत्ता. तेषु त्रिंशदधिकाः देशेभ्यः आगताः अनेकाः विदेशिनः अपि सन्ति. विदेशमन्त्रालयेन संसूचितं यत् नेपालदेशे अधुना पर्यन्तं 84 भारतीय नागरिकाः रक्षिताः सन्ति. तेषु त्रिशूली 1 इत्यस्याः परियोजनायाः 63 कर्मचारिणः अथ तमिलनाडु राज्यात् आगताः 21 जनाः सम्मिलिताः सन्ति. नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् संसूचयन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः उक्तवान् यत् भारतेन नेपालस्य वर्तमानानाम् आपदुद्धार कार्याणां साहाय्यार्थं 47 तन्मिथाधिकाः आपत्कालीन साहाय्य सामग्र्यः प्रेषिताः.
1: 2 जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है. पहला जहाज यहां से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं. दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे.
0: राष्ट्रियापत् प्रतिकार बलेन उक्तं यत् नेपालदेशे सहसा आगतेन विनाशकारिणा जलाप्लावेन बिहारोत्तर प्रदेशयोः सीमावर्ति क्षेत्रेषु अद्यावधि कश्चिदपि प्रतिकूल प्रभावः न जातः. तथापि उभयोः राज्ययोः प्रशासनस्य समन्वयेन परिस्थितिं निरन्तरं निरीक्ष्यमाणा अस्ति. राष्ट्रियापत् प्रतिकार बलस्य महानिरीक्षकः नरेन्द्र सिंह बुन्देला उक्तवान् यत् उभयोः राज्ययोः राष्ट्रियापत् प्रतिकार बलस्य 20 दलानि नियोजितानि सन्ति. तेषु बिहारे 9 दलानि अथ उत्तरप्रदेशे च 11 दलानि सन्ति. प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः उज्बेकिस्तान देशस्य 2-दिवसीय यात्रायै प्रस्थास्यति. प्रधानमन्त्री उज्बेकिस्तानस्य राष्ट्रपतेः शौकत मिर्जियोयेव इत्यस्य आमन्त्रणे सति ताश्कन्द नगरं गमिष्यति. यात्रावधौ प्रधानमन्त्री मोदी राष्ट्रपतिना मिर्जियोयेव इत्यनेन सह प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयां वार्तां करिष्यति. अस्याः वार्तायाः उद्देश्यं द्वयोः देशयोः रणनीतिक सहमतिम् इतोऽपि सुदृढीकरणमस्ति. प्रधानमन्त्री जनधन योजनायाः अद्य 12 जातानि, येन देशस्य वित्तीय समावेशन परिदृश्यस्य परिवर्तने महत्वपूर्णं सोपानं चिह्नितमस्ति. 2014 वर्षे अस्मिन्नेव दिने प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना इयं योजना समारब्धा. प्रधानमन्त्री जनधन योजनायाः अन्तर्गतम् अद्य पर्यन्तम् 61 कोट्यधिकाः लेखाः उद्घाटिताः सन्ति, यस्मिन् निक्षेपस्य मूल्यम् आहत्य 17,000,000,000,000 रूप्यकाणि अस्ति. रक्षाबन्धन पर्व भ्रातृ भगिन्योः मध्ये विद्यमानस्य विशेष स्नेहबन्धनस्य पर्व अस्ति यत् अद्य सम्पूर्ण देशे आचर्यते. अस्मिन् अवसरे भगिन्यः स्वभ्रातॄणां हस्तमणिबन्धेषु विविधवर्णानि रक्षसूत्राणि बध्नन्ति अथ च तेषां समृद्धेः, आरोग्यस्य, सुखस्य च कामनां कुर्वन्ति. तदनन्तरं भ्रातरः स्वभगिनीनां रक्षणस्य, साहाय्यस्य च संकल्पं कुर्वन्ति, सहैव ताभ्यः उपहारान् यच्छन्ति. राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला च रक्षाबन्धनस्य अवसरे देशवासिभ्यः शुभकामनाः प्रेषितवन्तौ इति वार्ताः.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नास. नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है. प्रशासन हजारों लापता लोगों को खोजने के लिए तेजी से काम कर रहा है. तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों ने बताया है कि लगभग 1500 लोग लापता हैं, जिनमें कई विदेशी शामिल हैं. नेपाल पुलिस ने बताया कि प्रभावित इलाकों से लगभग 1500 से अधिक लोगों को बचाया गया है, इनमें घायल लोग भी शामिल हैं. भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली एक जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग भी शामिल हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियान

0: में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। श्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोसेफ के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन सहयोग संबंधी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे और आगे की कार्य योजना तैयार करेंगे। दोनों नेता विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र के अग्रणी सीईओ, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत और अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने चांदी की गुणवत्ता की जांच के लिए 102 जिलों में 341 सिल्वर एसेइंग और हॉलमार्किंग सेंटर्स के साथ हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन आधारित चांदी के हॉलमार्किंग तंत्र का विस्तार किया है। मानक ब्यूरो त्योहारों के मौसम से पहले 25,000 से अधिक चांदी के कारोबारियों को पंजीकृत कर चुका है। पिछले साल सितंबर से ये व्यवस्था शुरू की गई थी और इसके बाद से 77 लाख से ज्यादा चांदी के आभूषणों पर हॉल मार्किंग की जा चुकी है। रक्षाबंधन का त्योहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने रक्षाबंधन पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि रक्षाबंधन का त्योहार प्राचीन काल से ही देश की संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। श्री अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन के त्योहार के साथ संपन्न होगी। 57 दिन तक चलने वाली ये यात्रा इस साल 3 जुलाई को शुरू हुई थी। यात्रा का समापन पवित्र गुफा मंदिर में महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में पवित्र छड़ी मुबारक के पहुंचने के साथ होगा। इस वर्ष पहलगाम और बालटल दोनों रास्तों से 4,80,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में सालाना बुद्ध अमरनाथ यात्रा भी आज संपन्न होगी। श्रावण मास में आयोजित होने वाली 12 दिन की इस यात्रा में श्रद्धालु पुंछ जिले में स्थित बाबा बुद्ध अमरनाथ मंदिर जाते हैं। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार कलराज स्क्वैश सेमीफाइनल में भारत के ही वीर चोट्रानी को हराकर PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। इससे पहले दोनों भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। फाइनल में आज रात वेलवन का मुकाबला हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकर से होगा। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने कल रात अमेरिका के सेंट लुइस में फाइनल में मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआनो को 15-13 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. India has stepped up efforts to trace and rescue Indian nationals stranded in Nepal due to the flash flood tragedy. Death toll in the massive flash floods in Nepal have reached 389 as authorities raced against time to find thousands of missing people, including 290 Indians. Authorities in Tibet and Nepal have reported over 1,500 people missing. Out of these, many are foreigners. Both authorities reported that people from more than 30 countries are missing. The External Affairs Ministry has said that 84 Indian nationals have been rescued so far in Nepal. These include 63 workers of the Trishuli 1 project as well as 21 people from Tamil Nadu. The minister said that contact with 290 Indians have not been established so far. Addressing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said

0: यूपीआई ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हुई, 1468 लोग अब भी लापता। भारत ने नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने के प्रयास तेज किए। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी पहल प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे। रक्षाबंधन का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज संपन्न होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने

0: इतिहास रचा, ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने। और अब समाचार विस्तार से। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। नेपाल में 389 और तिब्बत में 3 व्यक्तियों की मौत हुई। सीमा के दोनों तरफ 1468 व्यक्ति लापता हैं।
1: नेपाल के अधिकारियों ने 910 व्यक्तियों के लापता होने की जानकारी दी है। तिब्बत के अधिकारियों ने बताया कि 558 व्यक्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। बचाव कर्मी लोगों की तलाश कर रहे हैं। अभी क्षेत्र में संकट टला नहीं है। भोटो कोशी नदी स्रोत के पास कई झील बन गई हैं। डर यह है कि इनके टूटने से पानी का एक तेज बहाव आ सकता है, इससे आपदा और गंभीर हो सकती है। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने बाढ़ प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। इधर भारत ने बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि नेपाल में 290 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक भारत ने 84 नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री वालेंद्र शाह के साथ बातचीत की और उन्हें भारत की ओर से पूरी मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: वहीं नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
2: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार नेपाल में छोचेन खोला और पुरेपू सांगपो नदियों के संगम के पास बनी झील के टूटने का खतरा बढ़ गया है। झील में अगले कुछ दिनों में 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी पहुंच सकता है। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष है 9111-2308-8718 और 9111-2308-8719 पर आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए नंबर जारी किए हैं। नंबर है 9779851316807 और 9779813261107। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे, @AIR न्यूज हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक प्रमुख पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में आज ही के दिन की थी। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें कुल 3,17,000 करोड़ रुपए की जमा राशि है। दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल के रूप में यह योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच को लगातार नए आयाम दे रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में है, जबकि लगभग 56% खाताधारक महिलाएं हैं। जनधन खाताधारकों को 41 करोड़ से अधिक रुपए कार्ड जारी किए जा चुके हैं। प्रति खाते औसत जमा राशि 5,356 रुपए है। इस योजना ने लाखों लोगों, विशेष रूप से वंचित वर्गों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके उनके सामाजिक आर्थिक हालात को बेहतर बनाया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसी पहलों के कारण भारत का वित्तीय समावेशन सूचकांक इस साल 67 हो गया है, जो 2018 में 53.9 था। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क जाएंगे। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र

अग्रणी सीईओ, अध्यक्ष और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीलंका के नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल डेमियन फर्नांडो भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को और मजबूत करने के साथ साथ भारत और श्रीलंका के बीच

0: द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की। रक्षाबंधन का त्योहार आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि रक्षाबंधन का त्योहार प्राचीन काल से ही देश की संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। श्री अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन के त्योहार के साथ सम्पन्न होगी।
1: सत्तावन दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा आज औपचारिक रूप से समाप्त हो जाएगी। इस साल जुलाई 3 को शुरू हुई इस यात्रा के दौरान तकरीबन 4,80,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। अगरचे 9 अगस्त को इस यात्रा को मौसम की खराबी की वजह से रोका गया, लेकिन छड़ी मुबारक का सफर परंपरा के अनुसार जारी रहा। इधर आज महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में छड़ी मुबारक पंचतरणी से निकलकर पवित्र गुफा पहुंचाई जाएगी, जहां विशेष पूजा और पारंपरिक रस्मों के बाद इस साल की यात्रा संपन्न हो जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
2: महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा।
0: इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में सालाना बुद्ध अमरनाथ यात्रा भी आज संपन्न होगी। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में रक्षाबंधन का पर्व आज विशेष धार्मिक परंपराओं के साथ मनाया जा रहा है।
3: श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर आज तड़के भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल को करीब 2 फीट की विशेष राखी चढ़ाई गई। ये राखी पुजारी परिवार की महिलाओं ने कई दिनों की मेहनत से तैयार की थी। रेशमी कपड़े और धागों से बनी इस राखी में रुद्राक्ष, मोर पंख, ओम, त्रिनेत्र और त्रिपुंड को शामिल किया गया है। राखी तैयार करते समय महिलाओं ने जय महाकाल और ओम नमः शिवाय का जाप किया। धार्मिक परंपरा के अनुसार भगवान महाकाल को राखी अर्पित करने के बाद ही पुजारी परिवार की महिलाएं अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: केरलम में सबरीमला मंदिर ओणम पूजा के बाद आज रात 10 बजे बंद हो जाएगा। इस वर्ष त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड ने तिरुओणम के दिन मंदिर में ओणम भोज का आयोजन किया। मंदिर 16 तारीख सितंबर को पुनः खुलेगा। आज समाज सुधारक श्री नारायण गुरु की 172वीं जयंती मनाई जा रही है। केरलम में सुबह से ही विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्री नारायण गुरु की जन्मभूमि चेम्पा छंती में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। एक रिपोर्ट।
4: ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री 2015, 2016 और 2022 में इस मध्य एशियाई देश का दौरा कर चुके हैं। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव भी 2018 और 2019 में भारत आ चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र में मध्य एशियाई अध्ययन के प्रोफेसर राजन कुमार ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि बार बार की गई ये यात्राएं ही दर्शाती हैं कि उज्बेकिस्तान भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है।
5: भारत को अगर यूरेशिया में कोऑपरेशन बढ़ाना है तो वैसे में मुझे लगता है कि सेंट्रल एशिया के देश काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और सेंट्रल एशिया के देश जो हैं उसमें उज्बेकिस्तान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसकी मिलिट्री सबसे ज्यादा पावरफुल है।
4: इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन सहयोग संबंधी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे और आगे की कार्य योजना तैयार करेंगे। दोनों नेता विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
6: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: और अब खेल खबरों का रुख कर लेते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने कल रात अमेरिका के सेंट लुइस में फाइनल में मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआनो को 15-13 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। प्रज्ञानंदा ने $2,00,000 का पहला पुरस्कार जीतकर अगले साल के ग्रैंड शतरंज टूर में अपनी जगह भी पक्की कर ली है। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार कल रात स्क्वैश सेमीफाइनल में भारत के ही वीर चोटरानी को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज रात वेलवन का

0: मुकाबला हंगरी के खिलाड़ी बाला अजफरकत से होगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल जर्मनी को 3-1 से हराकर FIH विश्व कप में 5वां स्थान हासिल किया। पिछले 52 वर्षों में ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 1994 में हुए पहले माफ कीजिएगा इससे पहले 1994 में हुए पहले विश्व कप में टीम चौथे स्थान पर रही थी। इस प्रदर्शन से अगले महीने जापान में होने वाले एशियाई खेलों से पहले टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। नेपाल में आए भीषण सैलाब की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी हैं। अमर उजाला लिखता है, नई झील से फिर सैलाब का खतरा, बिहार और उत्तर प्रदेश में अलर्ट। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, 290 भारतीयों का अब तक सुराग नहीं, समय के साथ उम्मीदें भी घटती जा रही। हिंदुस्तान की सुर्खी है, तिब्बत से फिर आ सकती है तबाही, नियंत्रण कक्ष स्थापित। नहीं थम रहा स्वाइन फ्लू, 24 घंटे में 166 नए मामले। नवभारत टाइम्स की खबर है, पत्र लिखता है, बिना डॉक्टर की सलाह ना लें कोई दवा। खेलो इंडिया संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया गया संदेश जनसत्ता ने सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, प्रधानमंत्री ने जताई चिंता, कहा 2036 ओलंपिक खेलों के लिए आज से ही तैयारी करें खिलाड़ी। आईपीओ में लौटी तेजी, नए शेयरों का एक साल में 18% रिटर्न पर निफ्टी 7% टूटा। दैनिक भास्कर के बिजनेस पन्ने की खबर है, गिरते नजर आने लगे चीनी के दाम, खुदरा बाजार में भाव करीब 63 रुपए प्रति किलो। लोकसत्ते की सुर्खी है, ब्रेन सर्जरी में पहला AI सफल उपयोग, ट्यूमर निकालकर बचा ली आंखों की रोशनी। राजस्थान पत्रिका की खबर है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हुई, 1468 लोग अब भी लापता। भारत ने नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए प्रयास तेज किए। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी पहल प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे। रक्षाबंधन का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज सम्पन्न होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमरीका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने इतिहास रचा, ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलो हर्ट्ज पर, और ये प्रसारण आप सुन पा रहे हैं न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी।

तो दोस्तों आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम रसधारा, जहां शब्दों में भावनाएं हैं, संगीत में यादें हैं और हर बात में रिश्तों की मिठास है। रिश्ते आखिर होते क्या है? कभी दो मीठे शब्द, कभी बिना कहे समझ लेने का एहसास, कभी डांट में छिपी चिंता और कभी दूर रहकर भी साथ होने का विश्वास। आज की रसधारा समर्पित है ऐसे ही एक बेहद खूबसूरत रिश्ते के नाम, भाई बहन के रिश्ते के नाम। रक्षाबंधन केवल कलाई पर बंधने वाली एक राखी नहीं, बल्कि तो यह विश्वास की डोर है जो कहती है तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। राखी के इस पावन अवसर पर आइए बात करें रक्षा के बंधन की, उस बंधन की जिसमें बचपन की शरारतें भी है, छोटी छोटी नोकझोंक भी है और एक दूसरे के लिए ढेर सारा स्नेह भी।

मदरसा राखी बांधते समय बहन की आंखों में सिर्फ खुशी नहीं होती, उसमें अपने भाइयों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं भी होती है। और भाई के लिए राखी सिर्फ एक धागा नहीं, बहन के विश्वास की निशानी होती है। ये इतना प्यारा एहसास है कि बचपन में भाई बहन एक दूसरे से लड़ते हैं, खिलौने के लिए झगड़ते हैं, कभी टीवी के रिमोट छीनते हैं, लेकिन मुश्किल की घड़ी आए तो सबसे पहले एक दूसरे के साथ खड़े दिखाई देते हैं। यही तो इस रिश्ते की खासियत है। नोक झोंक रोज की हो सकती है, लेकिन अपनापन उम्र भर का होता है। और शायद इसीलिए रक्षाबंधन हमें सिर्फ भाई की कलाई पर राखी बांधने का अवसर नहीं देता, बल्कि रिश्तों को फिर से

ये जो बंधन है इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। याद कीजिए अपने बचपन का वो दिन कि रक्षाबंधन से कुछ दिन पहले ही घर में राखियां आ जाती थी। बहन अपनी पसंद की राखी चुनती, भाई उसे देखकर कभी खुश होता था तो कभी कहता था, इतनी बड़ी राखी कौन बांधता है। फिर आता था राखी का दिन, नई पोशाक, पूजा की थाली, रोली, अक्षत, मिठाई और वो छोटी सी राखी। बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती, भाई बदले में उपहार देता। फिर शुरू होती मिठाई खाने की प्रतियोगिता। लेकिन समय के साथ सब बदल जाता है। बचपन की वो कलाई जिस पर राखी बांधी जाती थी अब शायद किसी दूसरे शहर में है। भाई नौकरी के लिए दूर है, बहन अपनी गृहस्थी में व्यस्त है। फिर भी राखी का धागा दूरी को छोटा कर देता है, क्योंकि रिश्ते दूरी से नहीं दिल से जुड़े होते हैं।

एक आवश्यक सूचना 137वीं डाक एवं पेंशन अदालत मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्किल की अध्यक्षता में दिनांक 22/9/2026 को पूर्वा 11 बजे मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल योगा योग भवन P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 में गूगल मीट के माध्यम से 137वीं डाक एवं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की डाक सेवाओं एवं डाकघरों से पेंशन लेने वाले पेंशन भोगियों के पेंशन दावे से संबंधित शिकायतों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकारियों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित पूर्ण ब्यूरो का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री एस सी दास, सहायक निर्देशक डाक सेवा, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 के नाम से भेजी जाए और ये डाक या ईमेल आईडी cpmg-wb@indiapostpost.gov.in इसके अलावा adpgcowb@gmail.com या pg.wb@indiapostpost.gov.in इनके माध्यम से दिनांक 31/8/2026 तक या उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि वे उपरोक्त निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट के जरिए डाक एवं पेंशन अदालत में उपस्थित हो। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक सेवा से दूरभाष संख्या 0332212050 या फिर 0332212612 या फिर 0332212050 पर संपर्क

किया जा सकता है। डाक पेंशन अदालत के आवेदनों ईमेल पर डाक अदालत पेंशन अदालत शब्द लिखा होना चाहिए। डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकार आदि से संबंधित विधिक मामलों एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

भाई बहन के रिश्ते की मासूमियत और अपनापन लिए ये गीत आज भी उतना ही लोकप्रिय है। गीत के बोल जैसे एक बहन के मन की भावनाओं को आवाज देते हैं। रक्षाबंधन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, रक्षा और बंधन। लेकिन आज के समय में रक्षा का अर्थ केवल भाई द्वारा बहन की रक्षा करना नहीं होना चाहिए। रक्षा का अर्थ है एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, मुश्किल समय में साथ देना और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का सहारा बनना। आज बहन भी भाई की ताकत बनती है और भाई भी बहन की हिम्मत बनता है। इसीलिए राखी का रिश्ता बराबरी, सम्मान और विश्वास का भी रिश्ता है। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम रिश्तों की बात कर रहे हैं, तो एक बात और याद आ जाती है कि हर वो व्यक्ति जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़ा रहता है, किसी न किसी रूप में हमारे जीवन का अपना बन जाता है। ना कोई दोस्त भाई जैसा बन जाता है, कभी कोई बड़ी बहन जैसी सलाह देता है, कभी कोई छोटा भाई या बहन जैसा प्यार देता है। इसीलिए रक्षा का बंधन केवल एक पारिवारिक रिश्ते तक सीमित नहीं है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में एक दूसरे का सहारा बनना तो सबसे बड़ा मानवीय रिश्ता है।

दरअसल आगे के इस अवसर पर ये जो सदाबहार गीत था जिसमें रिश्ते की डोर और उसके भाव दोनों खूबसूरती से दिखाई देते हैं। तो दोस्तों कभी सोचा है एक छोटी सी राखी कितनी बड़ी कहानी अपने भीतर समेटे रहती है। उसमें बचपन की यादें होती हैं, माँ के हाथों से बनी मिठाई की खुशबू होती है, भाई की शरारतें होती हैं, बहन की शिकायतें होती हैं और सबसे बढ़कर होता है एक दूसरे के लिए मन में छिपा प्यार। कई भाई बहन ऐसे भी हैं जो आज एक दूसरे से बहुत दूर हैं, कुछ विदेश में हैं तो कुछ दूसरे शहरों में, लेकिन आज तकनीक ने दूरी को थोड़ा आसान कर दिया है। बिल्कुल, वीडियो कॉल पर राखी बांधी जा सकती है, संदेश भेजा जा सकता है, राखी डाक से भेजी जा सकती है, लेकिन इन सब के पीछे असली चीज वही है, हमारी भावना। रक्षाबंधन भारतीय परंपरा में लंबे समय से मनाया जाने वाला पर्व है। श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला यह त्यौहार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। कहीं भाई बहन की कलाई पर राखी बांधती है, कहीं परिवार में विशेष पूजा होती है, कहीं मिठाइयां बांटी जाती है। समय बदला है, जीवन शैली बदली है, त्यौहार मनाने के तरीके बदले, लेकिन रिश्तों की भावना आज भी वही है और शायद यही भारतीय त्योहारों की सबसे बड़ी खूबसूरती है। वे हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं। अब आप जरा अपने मन में भी एक तस्वीर बनाइए। अगर आपका भाई या बहन आपके सामने है तो आज उसे सिर्फ राखी या उपहार मत दीजिए, उसे कुछ शब्द भी दीजिए। कहिए, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। क्योंकि कई बार हम अपने सबसे करीबी लोगों से ही अपने मन की बात कहना भूल जाते हैं। एक छोटी सी बात, एक फोन कॉल, एक संदेश और किसी के पूरे दिन को खूबसूरत बना सकता है। तो दोस्तों, आज की रसधारा का संदेश बहुत सरल है। रिश्तों को निभाने के लिए हमेशा बड़े अवसरों की जरूरत नहीं होती। कभी किसी का हाल पूछ लेना भी रिश्ता निभाना है, कभी किसी की गलती को माफ कर देना भी रिश्ता निभाना है, और कभी बिना मांगे मदद कर देना भी रिश्ता निभाना है, और कभी कभी सिर्फ इतना कहना मैं हूं ना, किसी के लिए पूरी दुनिया जितना सहारा बन जाता है। इस रक्षाबंधन आइए हम सिर्फ राखी ना बांधे बल्कि रिश्तों में विश्वास, सम्मान और अपना पन भी बांधे। तो आज की इस रसधारा में हमने महसूस किया राखी के रंग, बचपन की यादें, भाई बहन की नोक झोंक और दूरियों में छिपा अपनापन, और रिश्तों की वो डोर जो समय के साथ कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत होती जाती है। क्योंकि रक्षाबंधन हमें याद दिलाता है कि जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो जाए, अपने रिश्तों के लिए थोड़ा समय निकालना

जरूरी है, क्योंकि घर बड़ा होने से परिवार बड़ा नहीं होता, दिल में जगह बड़ी होने से परिवार बड़ा होता है। और इसी खूबसूरत विचार के साथ आज की रसधारा से मुझे दीजिए इजाजत। रिश्तों की इस मीठी सी डोर को हमेशा संभाल कर रखिएगा। भाई बहन की ये प्यारी सी नोकझोंक, ये हंसी, ये शिकायतें और ये छोटी छोटी खुशियां ही तो जीवन को खूबसूरत बनाती है। आप जहां भी हो अपने भाई या बहन को याद कीजिए, और अगर संभव हो तो आज उनसे दिल की बात जरूर कीजिए, क्योंकि राखी का सबसे खूबसूरत उपहार कोई महंगा तोहफा नहीं, बल्कि यह एहसास है कि हम एक दूसरे के साथ हैं। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। इसी तरह अपनी भावनाओं को रिश्तों की खुशबू लिए फिर से मिलेंगे रसधारा में। तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखिए, रिश्तों को समय दीजिए और प्यार की स्टोर को हमेशा मजबूत रखिए। तो दोस्तों, आप सुन रहे आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर, और ये प्रसारण आप सुन पा रहे न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी। तो दोस्तों, जाते जाते आप सभी के लिए मधुर तराना छोड़े जाती हूँ।

0: नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। नेपाल में 389 और तिब्बत में 3 व्यक्तियों की मौत की खबर है। सीमा के दोनों तरफ 1468 व्यक्ति लापता हैं। नेपाल के अधिकारियों ने 910 व्यक्तियों के लापता होने की जानकारी दी है। तिब्बत के अधिकारियों ने बताया कि 558 व्यक्ति अभी भी लापता हैं। बचावकर्मी नदी के किनारों और अलग अलग पड़ी बस्तियों में जिंदा लोगों की तलाश कर रहे हैं और शवों को निकाल रहे हैं। अभी क्षेत्र में खतरा टला नहीं है। भोटे कोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव के आने की आशंका बन गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति और सलामती का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बातचीत की और उन्हें भारत की ओर से पूरी मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। इस बीच भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल को बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र के अग्रणी सीईओ, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत और अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीमती सीतारामन शिकागो विश्वविद्यालय के पोल्सकी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का दौरा करेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। श्रीलंका की नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल डेमियन फर्नांडो भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को और मजबूत करने के साथ साथ भारत और श्रीलंका के बीच नौसैनिक संबंधों को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में

0: वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में आज ही के दिन की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। श्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोसेफ के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व संस्कृत दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा की शाश्वत समृद्धि को चिन्हित करने के लिए श्रावण पूर्णिमा को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि संस्कृत भारत के ज्ञान, विचार और रचनात्मकता का निरंतर वाहक रही है और इसका सकारात्मक प्रभाव आज भी कई क्षेत्रों में देखा जा सकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने रक्षाबंधन के मौके पर देशवासियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधा कृष्णन ने कामना की है कि खुशियों का ये त्योहार प्यार, स्नेह और एकजुटता के बंधन को मजबूत करे और सभी को दया, सद्भाव और आपसी सम्मान के मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करे। उन्होंने सभी के लिए खुशी, शांति और समृद्धि की भी कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उम्मीद जताई कि रक्षाबंधन का त्यौहार सभी के जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सफलता लेकर आए। राजस्व सूचना निदेशालय ने असम और मिजोरम में 2 तलाशी अभियानों में 76 किलोग्राम ड्रग्स संबंधी दवाएं जब्त की हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस अधिनियम 1985 के प्रावधानों के तहत 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। मौसम विभाग ने उड़ीसा और बिहार में आंधी तूफान के साथ मूसलाधार वर्षा और बिजली कड़कने की आशंका तथा ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तराखंड में भी तेज वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. The death toll in devastating Nepal-Tibet flash floods has risen to 392, while 1,468 people remained missing on both sides of the border. Nepal authorities reported 910 people missing, while officials in Tibet said another 558 people remain unaccounted for, taking the total number of missing people on the two sides of the border to 1,468. Nepalese securities personnel have evacuated more than 800 people from affected districts. The catastrophe has triggered a major rescue effort by India, with External Affairs Ministry saying 290 Indian nationals in Nepal remain uncontactable. New Delhi is making urgent efforts to ascertain their whereabouts and coordinate the rescue with the missing Indians, including hydropower workers and tourist groups from different states. External Affairs Ministry has also established a 24-hour control room to assist with tracing and evacuation efforts. India has so far rescued 84 nationals. This includes 63 workers from the Trishuli 1 run-off river hydroelectric project and 21 people from Tamil Nadu. Prime Minister Narendra Modi also spoke to Nepal Prime Minister Balindra Shah and assured him of India's full humanitarian assistance. The Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana has completed 12 years today, marking a significant milestone in transforming the country's financial inclusion landscape. The scheme was launched by Prime Minister Narendra Modi on this day in 2014. Under the scheme, more than 59 crore accounts have been opened so far, with total deposits amounting to 3,17,000 crore rupees. Rakshabandhan, the festival of special bond between brothers and sisters, is being celebrated today across the country.

297.6 मीटर यानी 1008 किलो हर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचेता, जिस पर आप सुन रहे हैं रोजाना उर्दू प्रोग्राम अंजुमन। अंजुमन के सफर में आज आपके साथ है आपकी मेजबान सूफिया शीरिंग। आप सबों को सूफिया का पुरखलूस आदाब। आपको बताती चलूं कि स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 10:16 यानी कि इशारा है प्रोग्राम की पहली पेशकश आईना का। मातरम सामईन, आज का दिन मोहब्बत, अपनाइयत, खुलूस और बहन भाई के मुकद्दस रिश्ते को खराज तहसीन पेश करने का दिन है। आज हम सब रक्षाबंधन का खूबसूरत त्यौहार मना रहे हैं। इस मुसर्रत मौके पर मैं आप सबको दिल की गहराइयों से रक्षाबंधन की दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ। रक्षाबंधन सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि जज्बात का एक खूबसूरत बंधन है। ये एक ऐसा दिन है जब बहन अपने भाई की कलाई पर मोहब्बत का धागा यानी राखी बांधती है और इसकी सलामती, खुशहाली और लंबी उम्र के लिए दुआ करती है। दूसरी तरफ भाई अपनी बहन को जिंदगी भर मोहब्बत, एहतराम, तावुन और हिफाजत का यकीन दिलाता है। ये नन्ना सा धागा बज़ाहिर बहुत मामूली नजर आता है, मगर इसमें मोहब्बत, एतमाद, दुआओं और बेशुमार खूबसूरत यादों की एक पूरी दुनिया समाई होती है। बहन भाई का रिश्ता जिंदगी के अनमोल रिश्तों में से एक है। बचपन की शरारतें, छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ, एक दूसरे को छेड़ना और फिर फौरन एक दूसरे के लिए फिक्रमंद हो जाना, यही वो खूबसूरत लम्हे हैं जो इस रिश्ते को खास बनाते हैं। वक्त गुजर जाता है, बचपन पीछे रह जाता है, जिंदगी के मसरूफियाँ बढ़ जाती हैं, मगर बहन भाई के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता दिलों में हमेशा जिंदा रहता है। आज के दिन हमें सिर्फ तोहफों और रस्मों तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि ये अहद करना चाहिए कि हम अपने बहन भाइयों का हर हाल में साथ देंगे, उनके दुख और खुशियों में शरीक रहेंगे और मोहब्बत व एहतराम के इस रिश्ते को हमेशा मजबूत बनाए रखेंगे। आइए आज रक्षाबंधन के इस मुकद्दस और जज्बाती मौके पर मोहब्बत के अनमोल रिश्तों की कदर करें और अपने तमाम बहन भाइयों को दिल से कहें आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत मुबारकबाद। मोहब्बत, खुशी और अपनाइयत का ये मुकद्दस बंधन हमेशा कायम व दायम रहे। आप सुन रहे थे आईना में रक्षाबंधन और अब

चलिए आपकी समातों की नजर। अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म रक्षाबंधन का नगमा इरशाद कामिल के शायरी को मौसिकी से सजाया है हिमेश रेशमिया ने।

आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज में एल्बम रक्षा बंधन का ये नगमा, शायरी शाद कामिल की और जिसे मौसिकी से सजाया था हिमेश रेशमिया ने। आइए अब बात करते हैं हम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की। जी हाँ, हम हर रोज लेकर आते हैं मंजरनामा, जहाँ हमारी कोशिश होती है कि हमारे आसपास हो रही समाजी व माशी तब्दीलियों की बातें करें। कभी अदबी गुफ्तगू हो, कभी कोई समाजी मौसू हो, और कभी हमारी कोशिश होती है कि हुकूमत हिंद माइनॉरिटीज़ के लिए, अकलियतों के लिए किस तरह से काम कर रही है, किस तरह उन्हें मेन स्ट्रीम से जोड़ना चाहती है और उसके लिए क्या इकदाम उठाए हैं। इस पर भी हम भरपूर रोशनी डालें ताकि आप हुकूमत हिंद के तमाम स्कीमों से फैजयाब हों। तो आज हज़्ब वादा हम लेकर आए हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। हिंदुस्तान जैसे वसी और आबादी के लिहाज से बड़े मुल्क में बेरोजगारी और माशी खुद किफायत एक अहम मसला रहा है। लाखों अफराद में कारोबार करने की सलाहियत और ख्वाहिश तो मौजूद होती है, लेकिन सरमाया ना होने, बैंकों से कर्ज हासिल करने में दुश्वारी और जमानत फराहम ना कर सकने की वजह से वो अपना कारोबार शुरू या वसी नहीं कर पाते। इसी जरूरत को सामने रखते हुए हुकूमत हिंद ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का आगाज 8 अप्रैल 2015 को किया। इस स्कीम का बुनियादी मकसद छोटे और खुद कारोबारी अफराद को इदारा जाती और निस्बतन आसान कर्ज की सहूलत फराहम करना है, खसूसन ऐसे कारोबारों के लिए जिनके पास रिवायती बैंक कर्ज के लिए काबिल कबूल जमानत या बड़ी जायदाद मौजूद नहीं होती। लफ्ज मुद्रा MUDRA से मुराद माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी है। इस मंसूबे के जरिए छोटे कारोबारी इदारों, दुकानदारों, कारीगरों, खिदमत फराहम करने वालों और दीगर आमदनी पैदा करने वाले कारोबारों को माली मदद दी जाती है। ये कर्ज सिर्फ कारोबार शुरू करने के लिए ही नहीं बल्कि मौजूदा कारोबार को बढ़ाने, मशीनरी खरीदने, खाम माल हासिल करने और वर्किंग कैपिटल की जरूरत पूरी करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का सबसे अहम मकसद खुद रोजगारी को फरोग देना। हुकूमत का नजरिया ये है कि हर शख्स सिर्फ मुलाजमत तलाश करने वाला ना हो बल्कि अपनी सलाहियत के मुताबिक रोजगार पैदा करने वाला भी बन सके। छोटे कारोबार मजबूत होंगे तो न सिर्फ कारोबारी शख्स बल्कि दूसरे अफराद के लिए भी रोजगार के मौके पैदा होंगे। इस स्कीम के कई मकासद हैं, जैसे कि छोटे और खुद कारोबारियों को आसान कर्ज फराहम करना, बगैर जमानत के कर्ज तक रसाई देना, खुद रोजगारी और कारोबारी जहनियत को फरोग देना, ख्वातीन, नौजवान और महरूम तबकात को माशी मौका फराहम करना, गैर मुनज़्ज़म कारोबारों को रस्मी मालियाती निज़ाम से जोड़ना, छोटे कारोबारों की तरक्की के जरिए मकामी माशियत को मजबूत करना, ये सारे स्कीम मकासद हैं। मुद्रा योजना के तहत कर्ज को कारोबार की जरूरत और इसके मरहले के मुताबिक 4 जुमरों में तकसीम किया गया है। एक है शिशु, इस जुमरे में 50,000 रुपए तक कर्ज फराहम किया जाता है। ये बुनियादी तौर पर नई या बहुत छोटे कारोबारों के लिए मुफीद है, मसलन छोटी सी दुकान खोल लेना, टेलरिंग शॉप, ब्यूटी पार्लर, फूड स्टॉल या दीगर छोटे कारोबार। दूसरे नंबर पर आता है हमारा किशोर, इसके तहत 50,000 रुपए से ज्यादा और 5,00,000 रुपए तक के कर्ज फराहम किए जाते हैं। ये इन कारोबारों के लिए हैं जो इब्तदाई मरहले से आगे बढ़ चुके हों और इन्हें कारोबार में तौसी के लिए ज्यादा सरमाए दरकार हो। तीसरा है तरुण, इस उम्र में 5,00,000 रुपए से ज्यादा और 10,00,000 रुपए तक कर्ज फराहम किया जाता है। ये निस्बतन तरक्की याफ्ता छोटे कारोबारों के लिए अहम है। और चौथे नंबर पर आता है तरुण प्लस, मौजूदा निजाम में 10,00,000 रुपए से ज्यादा और 20,00,000 रुपए तक कर्ज का एक नया जुमरा शामिल किया गया है। ये बुनियादी तौर पर ऐसे कारोबारी अफराद के लिए जिन्होंने पहले तरुण जुमरे के तहत कर्ज लिया हो और इसे कामयाबी के साथ अदा कर दिया हो। वाज़ह है कि तरुण प्लस

तब ले सकते हैं जब आपने ऋण लिया हो और उसे अच्छे से अदा कर दिया हो। तब आप अपने कारोबार को मजीद बढ़ाने के लिए ऋण परस्त ले सकते हैं, जिसकी लागत होती है तकरीबन 20 लाख तक आप बैंक से कर्ज ले सकते हैं। तरुण पर जुमरा में 24 अक्टूबर 2024 से नाफिज किया गया है, जिसके बाद मुद्रा कर्ज की ज्यादा से ज्यादा हद 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। मुद्रा कर्ज आमतौर पर आमदनी पैदा करने वाले छोटे कारोबारों के लिए दिया जाता है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग, तिजारत और खदमात के शोबे शामिल हैं। इसके अलावा ज़राअत से वाबस्ता बाज़ मुआविन सरगर्मियां, मसलन पोल्ट्री, डेयरी और शहद की मक्खियों की परवरिश वगैरह भी स्कीम के दायरे में शामिल हैं। कर्ज की सूरत टर्म लोन या वर्किंग कैपिटल की जरूरत के मुताबिक हो सकती है। मसलन एक शख्स कपड़ों की दुकान खोलना चाहता है, कोई खातून ब्यूटी पार्लर या टेलरिंग सेंटर शुरू करना चाहती हैं, कोई नौजवान मोबाइल रिपेयरिंग या कंप्यूटर सर्विस का कारोबार कायम करना चाहता है, या कोई कारीगर अपनी मशीनें खरीदना चाहता है। ऐसे बहुत से छोटे कारोबार मुद्रा योजना से फायदा हासिल कर सकते हैं। अब मुद्रा कर्ज मुख्तलिफ मालियाती इदारों के जरिए फराहम किया जाता है, इनमें जैसे कि सरकारी और निजी शोबे के बैंक, इलाकाई देही बैंक यानी गांव के बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग, गैर बैंकारी मालियाती कंपनियां, NBFCs और माइक्रो फाइनेंस इदारे शामिल हैं। अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आमतौर पर कॉलेट्रल या जायदाद की जमानत दरकार नहीं होती है। अगरचे कर्ज की मंजूरी दरख्वास्त गुजार की अहलियत, कारोबारी जरूरत और मुतालिका कर्ज दहिंदा इदारे के कवायद के मुताबिक होती है। अगस्त 2026 तक दस्तयाब सरकारी मालूमात की रोशनी में अगर हम बात करें तो पीएम मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अब भी हुकूमत की फाल और अहम मालियाती स्कीमों में शामिल है। सबसे अहम ताज़ा तब्दीली मुद्रा कर्ज की ज्यादा से ज्यादा हद का 20 लाख रुपए तक का बढ़ाया जाना और तरुण प्लस उम्र का आगाज है। 2025-26 के सरकारी डेटा स्नैपशॉट के मुताबिक जून 2025 तक मजमूई तौर पर तकरीबन 53.85 करोड़ मुद्रा अकाउंट्स मंजूर किए जा चुके हैं। इस सरकारी डेटा में खवातीन के लिए भी मजमूई मंजूरी तकरीबन 15.13 लाख करोड़ रुपए और नए कारोबारी अफराद के लिए तकरीबन 10.80 लाख करोड़ रुपए तक दर्ज हैं। इस तरह अगर हम बात करें कि वज़ारत खजाना के महकमा मालियाती खदमात ने 2026 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 11 साल मुकम्मल होने के मौके पर, जैसे कि मैंने बताया कि 2015 से शुरू हुआ है 2026, यानी कि इस स्कीम को लगभग 11 साल हो चुके हैं। इस स्कीम को छोटे अखरीद कारोबारियों को बाख्तियार बनाने वाली अहम स्कीम के तौर पर उजागर किया जा रहा है। पीएम प्रधानमंत्री योजना को सरकारी जन समर्थ प्लेटफॉर्म पर भी शामिल किया गया है, जहां मुख्तलिफ सरकारी कर्ज स्कीमों से मुख्तलिफ मालूमात और दरख्वास्त के अमल तक रसाई हासिल की जा सकती है। मुद्रा योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसने छोटे कारोबारी अफराद को बैंकिंग निजाम से जोड़ा है और जमानत के बगैर कर्ज तक रसाई के इम्कान बढ़ाए हैं। ख्वातीन, नौजवानों और नए कारोबारी अफराद के लिए ये एक अहम मालियाती सहारा साबित हुई है। तहम सिर्फ कर्ज देना काफी नहीं, कारोबारी कामयाबी के लिए मुनासिब मनसूबाबंदी, मार्केट की समझ, मालियाती नज्म ज़ब्त, कर्ज की हर वक्त बर वक्त अदायगी भी इसमें ज़रूरी है भाई। क्योंकि देखिए, अगर आपको ही तजुर्बा नहीं होगा, अगर आप वक्त पर अपना लोन नहीं चुकाएंगे तो आपको ही नुकसान है। हुकूमत हिंद आपकी मदद करना चाहती है, लेकिन सबसे बड़ी मदद तो इंसान खुद की खुद करता है। जो इंसान अपनी मदद नहीं कर सकता, उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। इसलिए हुकूमत हिंद उनकी मदद करना चाहती है जो अपनी मदद करना चाहते हैं, जो अपने हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, जो अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, और इसके लिए एक मंसूबाबंदी, अमली तजर्बा और मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। और साथ साथ अगर आप लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं, तो उसकी बरवक्त अदायगी भी ज़रूरी होती है, ताकि आप शिशु से तरुण, तरुण से तरुण प्लस में जाएं और इस तरह से अपने कारोबार को बढ़ाते बढ़ाते आप 20 लाख तक कर्ज ले सकते हैं। मौजूदा सामीन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हिंदुस्तान में छोटे कारोबारी खुद रोजगारी को फरोग देने की एक अहम कोशिश है। इसने एक अहम आम शहरी को यह एतमाद दिया है कि अगर इसके पास मुनासिब कारोबारी ख्याल और मेहनत करने का जज्बा हो तो सरमाया हासिल करने की रस्मी ज़राए तक रसाई मुमकिन है। लेकिन आप खुद भी जाने इस बारे में, दूसरों को भी आगाह करें और कोशिश करें कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिलती, हर कोई नौकरी करना भी नहीं चाहता। लोग

कारोबार करना चाहते हैं, जो लोग छोटा से छोटा कारोबार या उस कार छोटे कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से बेहतर कोई स्कीम नहीं है। तो आज हमने बहुत तफसीली गुफ्तगू की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पर। हमारी कोशिश होगी अगली बार हम किसी अहम स्कीम पर बात करें जो माइनॉरिटीज के लिए खास अहम होती है, अकलियतों के लिए, और अकलियतों के लिए इसमें और ज़्यादा फ़ायदे भी शामिल किए जाते हैं, कुछ सब्सिडीज वगैरह भी दी जाती हैं। आप बेहतर होगा कि इस बारे में खुद तलाश करें और खुद महकुमा हिंद जो मदद करना चाहती है, हाथ बढ़ा रही है, कि आप भी अपना हाथ बढ़ाएं और इस बढ़े हुए हाथ को थाम लें, क्योंकि इस बढ़े हुए हाथ को थाम कर ही हम एक स्ट्रीम में आ सकते हैं, सबका विकास हो सकता है, सबका साथ हो सकता है, और मुल्क जो है ना तरक्की की राह पर जो चल रहा है इस वक्त वो दौड़ सकता है। तो मौज़े सामीन, उम्मीद है कि हमारी गुफ्तगू आपको अच्छी लगी होगी और हमारी ये मालूमात जो हमने चंद थोड़ी सी आपको फराहम की हैं, इस मालूमात की रोशनी में आप आगे का सफ़र तय करेंगे और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से फैज़याब होंगे।

अब आपकी समातों की नजर लता मंगेशकर और मुकेश कुमार की आवाज में फिल्म बेईमान का नगमा शायरी वर्मा मलिक की, जिसे मौसीकी से सजाया है शंकर जयकिशन ने।

0: उन दोनों शख्सों को लगता है कि ये जो शख्स प्लेटफॉर्म पर खड़ा है
1: वो
0: ये तो मुझसे जुदा हो रहा है, ये कैसे हो रहा है ना, हम तो लिस्ट में हैं, लेकिन वो शख्स जो है मुझे जो देख रहा है प्लेटफॉर्म से वो हम उससे दूर जा रहे हैं। ये जो हम दूर जा रहे हैं एक्चुअली क्या है कि यही जो दूरी है वो आपको बता रही है कि वो जो शख्स बैठा है या खड़ा है जिससे हम दूर जा रहे हैं, हमको ट्रेन लेके जा रही है, वो रेफरेंस फ्रेम है कि उसके ताल्लुक से हम जो है सुकून में हैं या रेस्ट में हैं। उस आदमी को नजर में आ रहा है कि हम जो है ट्रेन में घरचे बैठे हुए हैं लेकिन हम चूंकि मोशन में, चूंकि ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो ट्रेन में जब जा रहे हैं तो ट्रेन मूव कर रहा है, जब ट्रेन मोशन में है तो हम भी मोशन में
1: जी,
0: तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। जैसे ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ भी चीजें हो सकती है, घर हो सकता है,
1: जिस हालत में वो उस हिसाब से सोच रहा है।
0: जी बिल्कुल, सड़क है, नुमाया सड़क है, वो चीजें भी रेफरेंस फ्रेम हो सकती है जिसके ताल्लुक से आप अपने आप को समझिए कि हम रेस्ट में हैं या मोशन में। जैसे इस कमरे में हम लोग बैठे हैं, इस कमरे के ताल्लुक से हमारा आप रेस्ट में है लेकिन चूंकि जमीन खुद गर्दिश कर रही है, अपने चारों तरफ रोटेशनल मोशन कर रही है, तो हम जमीन के ताल्लुक से रेस्ट में नहीं है
1: जी।
0: ठीक है, तो इस रेफरेंस फ्रेम को समझना, इस वक्त हमारा ये कमरा जो है ये हमारा रेफरेंस फ्रेम है, इसके ताल्लुक से हम और आप जो है बैठे हुए हैं रेस्ट की हालत में हैं, और मोशन का तस्वुर हमारा जब आएगा तो रेफरेंस फ्रेम जो लफ्ज है उसको पहले क्लियर करना हो, रेफरेंस फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या, तो हम समझ सकते हैं
1: वक्त के साथ तब्दीली
0: आनी चाहिए
1: तो वो मोशन में आएगा।
0: जी, अगर वक्त के साथ अपनी जगह को तब्दील नहीं कर रही है तो हम कहेंगे कि वो चीजें सुकून की हालत में रेस्ट में, ये इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन इसके लिए क्या है कि हम लोगों का एक साइंस में एक टर्म आता है, वो आता है नथिंग इन द यूनिवर्स इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट, दुनिया की कोई भी शय जो है मुतलक सुकून की हालत में नहीं है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि चूंकि बजात खुद जमीन जो है चारों तरफ घूम रही है और जमीन पर हम मौजूद हैं, हमारी जो कयाम है, हमारी जो बका है वो जमीन पर है, तो जमीन पर जितनी चीजें हैं वो सब के सब मोशन में है, तो कोई भी चीज अपने आप को ये ना समझे कि हम रेस्ट में हैं। अगर से ये कुर्सी जो खाली पड़ी है, ये कुर्सी हमें और आपको जाहिरन लग रहा है कि ये रेस्ट में है मगर ये रेस्ट में नहीं है अगर इसको रेफरेंस फ्रेम जमीन को बनाया जाए। जमीन चूंकि खुद चल रही है, चारों तरफ गर्दिश कर रही है ना, तो जमीन के ताल्लुक से अगर रेफरेंस फ्रेम बनाकर देखें तो ये चीज जो है, ये कुर्सी भी जो है, ये आपको मोशन में, तो इसको समझना है ना कि पानी की बूंद आ रही है ना, हम पर बरस रही है, हम जो है एक जगह दौड़ कर ऐसे जगह छुपे या फिर उसी रास्ते पर चल रहे जहां बारिश नहीं हो रही है। ठीक है, ये बारिश जो पानी की बूंदे हम तक पहुंच रही है, हम जो है उसको रेस्ट और मोशन से किस तरीके से जोड़ सकते हैं, जोड़ के देखें कि भाई और रोजमर्रा की जिंदगी में और भी बहुत सारे वाकयात होते रहते हैं। जैसे अगर इस रेस्ट और मोशन के चैप्टर में ही अगर हम लोग पढ़े तो न्यूटन एक बहुत बड़ा साइंसदान थे जिन्होंने इस रेस्ट और मोशन के ताल्लुक से लॉ ऑफ मोशन दिया। ये लॉ ऑफ मोशन हमारी जिंदगी में ऐसा घुला मिला है कि आप इससे अपने आप को बचा नहीं सकते।
1: क्या है ये लॉ ऑफ मोशन?
0: लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का लॉ जो है, तीन लॉ दिए थे वो
1: जी,
0: है ना, उनका पहला लॉ, दूसरा लॉ, तीसरा लॉ, बड़ा ही फेमस है, जिसमें पहला लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। ये लॉ क्या कहता है कि आम जबान में हम बच्चों को अगर समझाएं कि कोई भी चीज चाहे वो रेस्ट में है हो या मोशन में हो, वो उसी वक्त तक रहती है जब तक के कोई उसको बैरूनी शय, एक्सटर्नल एजेंसी, उसकी हालत को चेंज ना कर दे या चेंज करने की कोशिश करे। अगर चेंज कर दे या चेंज करने की कोशिश करे, यही आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ। और मजीद अगर थोड़ा सा इसमें जाएंगे तो पता चलेगा कि ये एक्सटर्नल एजेंसी जो है कुछ नहीं, यही तो फोर्स है कि हम अगर एक कुर्सी को अपनी जगह से हटाकर दूसरी जगह रख रहे हैं तो इसके लिए हमें फोर्स चाहिए,
1: फोर्स की जरूरत पड़ेगी,
0: कुवत पड़ेगी,
1: ताकत
0: की जरूरत पड़ेगी, और ये ताकत लगाने पर जब उसकी हालत तब्दील हो गई तो ये हालत की तब्दीली क्यों कर हुई, यही न्यूटन का पहला गुड़िया है, फर्स्ट लॉ। लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया के माने क्या है, इनर्शिया अगर एक खासियत है, एक प्रॉपर्टी,
1: आउटर एजेंट है
0: जी,
1: समझ ले के बाहरी दबाव है या बाहरी प्रेशर है, तो अगर उसको
0: अगर हम एलैबोरेट करें, बच्चों को समझाने की कोशिश करें कि इनर्शिया होता क्या है, ये किसी भी चीज की खासियत है जिसकी वजह से वो बॉडी ये चाहती है कि हम जिस हालत में हैं उसी हालत में रहें। हम अगर रेस्ट में हैं तो वो चीज रेस्ट में रहना

0: पसंद करेगी, वो मोशन में है तो वो मोशन में रहना पसंद। चीज की इस खासियत का नाम है इनर्सिया, और ये इनर्सिया भी दो तरह के होते हैं, इनर्सिया ऑफ रेस्ट, इनर्सिया ऑफ मोशन। जो रोजमर्रा आप और हम मुशाहिदा करते हैं, हमारा ये बस पर चढ़ना, ब्रेक लगने पर अपने आप देखेंगे हम आगे की तरफ झुक गए, या फिर गाड़ी अचानक चल दी तो हम पीछे की तरफ झुक गए, या फिर बस से उतरते वक्त अगर हम अपने कदमों को जमा देंगे तो गिर जाते हैं। कुछ दूर हमको खुद भी चलना पड़ता है या दौड़ना पड़ता है रनिंग बस से उतरते वक्त, है ना
1: जी।
0: ये सारा का सारा जो है, जैसे हमारे पंखा अगर हम लोग अचानक बंद करते हैं वो रुक नहीं जाता, कुछ देर चलते ही पंखा चलेगा, पंखा चलने के बाद ही क्या होगा वो रुकेगा। ये सारा का सारा इनर्सिया है। अब इनर्सिया में दोनों को अगर हम अलग अलग तरीके से पढ़ें तो अलग अलग समझ पाएंगे, और फिर ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी हमको समझ में आएगा। अगर हम लोग इनर्सिया को समझे कि बच्चा है वो ट्रेन में या बस पर सवार है और बस जो है चल रही है, अगर वो बस अचानक जो है उसका ड्राइवर ब्रेक मारा तो बच्चा जो है क्या होगा, गर्चे वो बैठा हुआ हो कुर्सी पर या फिर खड़ा हो तो अपने आप को क्या करेगा, वो आगे की तरफ झुकेगा। ये उसकी आगे की तरफ झुकना इनर्सिया ऑफ मोशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो मोशन में था, उसकी पूरी की पूरी बॉडी जो है मोशन में थी। उसके बॉडी के दो पार्ट कर दिया, एक निचला हिस्सा कमर के, एक कमर से ऊपर का हिस्सा। कमर का जो निचला हिस्सा है वो चूंकि गाड़ी से लगा हुआ था, गाड़ी मोशन में थी, गाड़ी रेस्ट में आ गई तो ये भी क्या होगा, रेस्ट में आ जाएगा। लेकिन ऊपरी हिस्सा चूंकि मोशन में था, मोशन में रहना चाहेगा, इसीलिए उस चाहत की वजह से क्या होगा, वो आगे की तरफ झुक जाता
1: है, झुक जाते हैं।
0: और इसके ठीक ऑपोजिट अगर हम इनर्सिया ऑफ रेस्ट के अगर एक एग्जांपल के जरिए बच्चों को समझाने की कोशिश करें तो इसी में देखेंगे कि बस पर कोई बैठा हुआ एक बच्चा है, बस अचानक जो है चलना शुरू कर दी
1: जी।
0: तो बच्चे या हम आपको देखेंगे कि हम बैकवर्ड एक फोर्स महसूस करते हैं कि पीछे की तरफ हम झुक गए,
1: पीछे की तरफ झुक जाते हैं।
0: तो इसमें भी वही फिजिक्स है, क्या है कि भाई मेरा निचला हिस्सा चूंकि बस से ट्रेन से लगा हुआ था
1: जी।
0: और इनर्शिया की वजह से क्या हुआ, बस चूंकि चलने लगी तो मेरा निचला हिस्सा भी चलने लगा, लेकिन ऊपर का हिस्सा चूंकि सुकून की हालत में है तो वो चाहेगा कि हम सुकून में ही रहें, तो जिसके कारण क्या होगा, वो बैकवर्ड हम एक जॉल्ट महसूस करते हैं और हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं। ये हमारा जो है इनर्सिया का कंसेप्ट है, जिसमें हम मोशन का पहला लॉ को बता सकते हैं। इसी तरह दूसरा जो लॉ है न्यूटन का बड़ा इंटरेस्टिंग है
1: जी।
0: इस लॉ को हम लोग लॉ ऑफ फोर्स भी कहते हैं, कि जिसमें लॉ ऑफ फोर्स में क्या है कि इससे हमको फोर्स का डेफिनेशन मिलता है, कि इस लॉ में कहा गया कि मोमेंटम की अगर हम लोग पढ़े, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इम्प्रेस फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को अगर हम लोग बोले कि मोमेंटम की तब्दीली की जो सरा है वो आमिल फोर्स इम्प्रेस फोर्स के बराह रास्त मुतनासिब होती है, और उसी सिम्ट में हरकत करती है जिस सिम्ट में फोर्स। अब यहां से फोर्स का एक डेफिनेशन भी आया और फोर्स का फॉर्मूला भी आता है। इस लॉ में क्या है कि हम अपने आप को अगर इसमें फिट करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी चीजें जो है वो इससे ताल्लुक रखती हैं, कि भाई लॉ ऑफ फोर्स जो है अगर हम किसी एक बॉडी का मोमेंटम को चेंज कर रहे हैं तो वो मोमेंटम का चेंज उसके फोर्स के ठीक समांतर होगा। जैसे मिसाल के तौर पर एक बच्चा क्रिकेट खेल रहा, अब वो क्रिकेट खेल रहा है, उसके सामने एक बहुत तेज रफ्तार बॉल आ गई, अब वो उसको कैच करना चाहता, तो वो उस कैच करने के लिए अपने हाथ को क्या करता है, पीछे की तरफ ले जाता है। ये हाथ को पीछे की तरफ ले जाना मोमेंटम की तब्दीली है, और जाहिर सी बात वो कैच करने के बाद जो हाथ को पीछे ले गया उसको ले जाने में कुछ ना कुछ वक्त लगा
1: जी, कुछ सेकंड तो लगे,
0: कुछ सेकंड लगे। ये कुछ सेकंड और ये जो मोमेंटम की तब्दीली ये वहां फोर्स क्रिएट करेगा। यही वजह है कि बच्चे जो है अपने अगर अचानक हम बॉल को पकड़ते हैं तो हमको एक बहुत जोर का धक्का लगता है, क्योंकि वो कुव्वत से बॉल आ रही है,
1: बिल्कुल
0: है ना। इसी तरह न्यूटन का तीसरा लॉ भी है जो हर जगह फिट होता है। न्यूटन का तीसरा लॉ क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप किसी को एक थप्पड़ मारिएगा तो अपने हाथ में भी आप दर्द महसूस कीजिएगा, ये तो न्यूटन का तीसरा लॉ है। और ये लॉ जो है ऐसा है कि आसपास जो हम लोग देखते हैं हमारे बहुत सारी चीजें जो इससे जुड़ी हुई है। जैसे इसको अगर बच्चों को एग्जाम्पल के जरिए समझाया जाए कि एक कश्ती पर एक बच्चा जैसे ही कदम रखता है कश्ती थोड़ा आगे की तरफ घूम जाए, है ना, क्योंकि कश्ती पानी पर है, और कश्ती पर कदम रखने से ही क्या होगा कि कश्ती आगे की तरफ चले, तो ये कश्ती पर एक हम रिएक्शन दिए, एक्शन किए जिसकी वजह से उसके अंदर एक रिएक्शन क्रिएट हुआ, कश्ती जो पीछे की तरफ थोड़ा मूव कर दे। इसीलिए एहतियात जरूरी है।

0: भाई कश्ती पर चढ़ते वक्त बच्चों का हाथ पकड़ लिया जाए, ताकि वो गैप जो एक क्रिएट होता है कि वो बच्चे जो है जानते नहीं है, यहाँ न्यूटन का लॉ काम करता है। न्यूटन का लॉ में हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे पापोश, हम लोग घरों में अपने कमरे के सामने पापोश रखते हैं, उस पापोश में देखिए डस्ट लग जाती है, उस डस्ट को कैसे निकालती है। हम अपने घरों में देखते हैं मेरी वालदा है या मेरी बहन है या मेरी बीवी है, वो किस तरीके से निकालती है, उसको झाड़ती है। ये झाड़ना क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ है और उसमें पहला लॉ शामिल है। ठीक है, हम एक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन हो रहा है। पहला लॉ क्या शामिल है कि हम बोले कि कोई भी चीज जो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहिए, सुकून में है तो सुकून में है ना, और मोशन में है तो मोशन में रहना चाहिए। वो डस्ट रेस्ट में
1: है,
0: उसको हम मोशन में ला दिए तो क्या हुआ, पूरा का पूरा साफ हो गया
1: जी।
0: तो हम लोग जो है रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरीके से ये रेस्ट एंड मोशन को समझ सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने रेस्ट और मोशन के ताल्लुक से समझाया, हमारे सामने तो ये बात समझे होंगे और अपने रोजमर्रा के कामों में इन बातों को गौर जरूर करेंगे। तो ये था आज का साइंस खेल खेल में, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस एपिसोड में।
0: बहुत शुक्रिया आपका।
2: आप सुन रहे थे साइंस खेल खेल में मुश्ताक अहमद साहब को, जिसे बात कर रही थी हमारी मेज़बान ये शाइस्ता अनास। आपको बता चुकी हूँ कि ये प्रोग्राम आप रिपीट समाप्त फरमा रहे थे, और चूंकि आज रक्षाबंधन है, आप सबों को रक्षाबंधन की ढेरों मुबारकबाद और अंजुमन प्रोग्राम की आखिरी पेशकश प्रीति सागर की आवाज़ में हम बच्चे हैं हिंदुस्तान के फिल्म का ये नगमा शायरी मौसीकी से सजा है ज़मीर बीकानेरी ने।

This way, please.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर, और ये प्रसारण आप सुन पा रहे हैं न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी। तो दोस्तों, वक्त हो चला है सुरभि कार्यक्रम का। सुरभि कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा है, में आज हम बातें करेंगे, जी हाँ, रक्षाबंधन के विषय में। रक्षाबंधन भारत के प्रमुख पारंपरिक त्योहारों में से एक है। इसे सामान्यतः श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, और इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, उसके सुखी और स्वस्थ जीवन की कामना करती है, और भाई अपनी बहन की सुरक्षा तथा हर परिस्थिति में उसके साथ खड़े रहने का संकल्प लेता है। हालांकि आज के समय में रक्षाबंधन का अर्थ केवल भाई द्वारा बहन की रक्षा तक सीमित नहीं है। यह त्योहार एक दूसरे के प्रति प्रेम, सम्मान, सहयोग और जिम्मेदारी की भावना को भी मजबूत करता है। राखी का धागा देखने में ही भले ही बहुत साधारण हो, लेकिन इसके साथ जुड़ी भावनाएं बेहद गहरी होती है। बहन जब भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो वो मानो अपने रिश्ते की डोर को और मजबूत करती है। भाई भी केवल उपहार देने या मिठाई खिलाने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि बहन के जीवन के हर सुख दुख में साथ देने का भाव व्यक्त करता है। और आज इस रिश्ते का स्वरूप भी बदल रहा है। बहनें भी भाइयों की ताकत बनती है, उनके कठिन समय में साथ देती है, और भाई भी बहनों के सपनों, शिक्षा, करियर और जीवन के फैसलों में उनका सहयोग करते हैं। इसलिए रक्षाबंधन को आज पारस्परिक स्नेह और सम्मान का पर्व कहना अधिक उचित होगा। तो दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन घरों में एक अलग ही रौनक दिखाई देती है। सुबह स्नान के बाद पूजा की तैयारी होती है। बहनें राखी की थाली सजाती है। थाली में रोली, अक्षत, मिठाई और दीपक जैसी पारंपरिक वस्तुएं रखी जाती है। भाई को तिलक लगाकर उसकी कलाई पर राखी बांधी जाती है और फिर मिठाई खिलाई जाती है। कई परिवारों में भाई अपनी बहन को उपहार भी देता है, लेकिन इस पूरे उत्सव की सबसे सुंदर बात है मिलना और साथ बैठना। आज की व्यस्त जिंदगी में परिवार के सदस्य अक्सर अलग अलग शहरों में रहते हैं। ऐसे में रक्षाबंधन दूरियों को कम करने का अवसर बन जाता है। जो भाई या बहन दूर रहते हैं, वे यात्रा करके घर पहुंचते हैं, और अगर मिलना संभव ना हो तो फोन या फिर वीडियो कॉल या ऑनलाइन के माध्यमों से भी अपनी भावनाएं साझा करते हैं। रक्षाबंधन हमें यह भी याद दिलाता है कि रिश्तों की मजबूती केवल त्योहारों पर नहीं, बल्कि रोजमर्रा के व्यवहार से बनती है। एक दूसरे की बात सुनना, सम्मान करना, जरूरत के समय साथ खड़ा होना और एक दूसरे की खुशियों में शामिल होना, यही किसी भी रिश्ते की असली ताकत है। इसलिए इस रक्षाबंधन पर राखी के साथ एक और संकल्प लिया जा सकता है। हम अपने रिश्तों में संवाद बनाए रखेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे और जरूरत के समय अपने परिवार का सहारा बनेंगे। और क्यों ना इस बार त्योहार को थोड़ा और संवेदनशील बनाया जाए। पर्यावरण के प्रति जागरूक रहते हुए प्राकृतिक सामग्री से बनी राखी का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही जरूरतमंद बच्चों या परिवार के साथ मिठाई और खुशियां बांटकर त्योहार की खुशी को और बड़ा किया जा सकता है। तो दोस्तों, रक्षाबंधन सिर्फ कलाई पर बंधा हुआ एक धागा नहीं है, यह उस भरोसे की निशानी है जो कहता है रिश्ता चाहे जितनी दूरियों में क्यों ना हो, अपनापन हमेशा दिल के करीब रहता है। बहन के हाथों की राखी में बचपन की यादें हैं, साथ बिताए अनगिनत पल हैं, छोटी छोटी नोकझोंक है और एक दूसरे के लिए ढेर सारा प्यार है। भाई बहन का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसमें शिकायतें भी होती है।

शरारतें भी होती है, लेकिन इनके पीछे छिपा प्यार कभी कम नहीं होता। तो दोस्तों, आज की चर्चा में हमने जाना कि रक्षाबंधन हमें प्रेम, विश्वास, सम्मान और पारिवारिक एकता का संदेश देता है। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि जीवन की भागदौड़ में हम अपने रिश्तों के लिए समय निकालें और अपनों के साथ खड़े रहें। इसी खूबसूरत संदेश के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जी हाँ, आप सभी श्रोताओं को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। आपके भाई बहन का रिश्ता हमेशा प्रेम और विश्वास और खुशियों से भरा रहे। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरभि के अंतर्गत चर्चा है।

तो दोस्तों अब सुरभि कार्यक्रम के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पहल की ओर। पहल में आज हम बातें करेंगे स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कौशल विकास की पहल। आज के दौर में शिक्षा के साथ साथ किसी व्यक्ति के पास रोजगार योग्य कौशल होना भी बेहद महत्वपूर्ण है। कोई हुनर व्यक्ति को न केवल नौकरी पाने में मदद करता है बल्कि उसे स्वरोजगार और उद्यमिता के अवसर भी देता है। इसी सोच के साथ भारत सरकार का अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं कारीगरों और महिलाओं के कौशल रोजगार और उद्यमिता को जोड़ने के लिए विभिन्न प्रयास कर रहा है। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन यानी कि पीएम विकास। ये एकीकृत योजना है जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को कौशल प्रशिक्षण रोजगार और आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना तथा पारंपरिक कला और शिल्प की विरासत को संरक्षित और आगे बढ़ाना है। इसके माध्यम से पारंपरिक कला और शिल्प से जुड़े कारीगरों तथा हस्तशिल्पियों को उनकी जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण में कला एवं शिल्प से जुड़े जॉब बाजार से जुड़ाव ई कॉमर्स वित्तीय साक्षरता उत्पाद की डिजाइनिंग पैकेजिंग गुणवत्ता नियंत्रण और अन्य उपयोगी विषय शामिल हो सकते हैं और इसका उद्देश्य हुनर को आधुनिक बाजार की जरूरतों से जोड़कर कारीगरों की आजीविका को मजबूत करना है। वहीं नॉन ट्रेडिशनल स्किलिंग के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं को ऐसे कौशल सिखाने पर जोर दिया जाता है जिनसे वे आधुनिक रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। प्रशिक्षण NSQF अनुरूप जॉब रोल में दिया जाता है और इसमें हस्तशिल्प पर्यटन हॉस्पिटैलिटी कृषि हैंडलूम फूड प्रोसेसिंग तथा अन्य क्षेत्रों में को भी शामिल किया जा सकता है। प्रशिक्षण के साथ डिजिटल एवं वित्तीय साक्षरता संवाद कौशल और अंग्रेजी भाषा जैसे सॉफ्ट स्किल्स पर भी ध्यान दिया जाता है। योजना का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य प्रशिक्षण को केवल प्रमाण पत्र तक सीमित नहीं रखना है बल्कि उसे रोजगार स्वरोजगार और जैसे अवसरों से जोड़ना है। कौशल विकास के साथ महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इसके माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं को नेतृत्व बुनियादी उद्यमिता वित्तीय समावेशन डिजिटल साक्षरता और अन्य जीवन उपयोगी विषयों की जानकारी दी जाती है। योजना में उद्यमिता की क्षमता रखने वाले महिलाओं को आगे विशेष प्रशिक्षण देकर व्यवसाय शुरू करने में सहायता देने की परिकल्पना की गई है और साथ ही कुछ प्रशिक्षित महिलाओं को बिजनेस मेंटर्स के रूप में तैयार करने का प्रावधान भी है ताकि वे दूसरी महिलाओं उद्यमों को अपना व्यवसाय शुरू करने के और आगे बढ़ने में मार्गदर्शन दे सके। पीएम विकास के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित 6 अल्पसंख्यक समुदायों के भारतीय नागरिक पात्र हो सकते बशर्ते वो योजना के निर्धारित शर्तों को पूरा करते हो। योजना के विभिन्न घटकों में सामान्यता 14 से 45 वर्ष आयु वर्ग को लक्षित किया गया है जबकि महिला नेतृत्व एवं उद्यमिता घटक के लिए 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग पात्र है। संबंधित प्रशिक्षण के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव की शर्तें भी लागू हो सकती है। महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए भी योजना का विशेष प्रावधान किए गए हैं। भारत की पहचान केवल उसकी आधुनिक उपलब्धियों से नहीं बल्कि सदियों पुराने कला और शिल्प से भी है। देश के अनेक कारीगर पारंपरिक हुनर की पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते हैं। इसलिए कौशल विकास का अर्थ केवल नया काम सीखना नहीं बल्कि पारंपरिक हुनर को आधुनिक बाजार

पैदा करने का आत्मविश्वास भी देती है। अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कौशल विकास की एक ऐसी पहल का उद्देश्य है हुनर को रोजगार से जोड़ना, रोजगार को आजीविका में बदलना और आजीविका को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना। जरूरत है कि पात्र युवा, कारीगर और महिलाएं ऐसे सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें और अपनी योग्यता के अनुरूप प्रशिक्षण का चुनाव करें और अपने हुनर को आगे बढ़ाने के अवसरों का लाभ उठाए। तो दोस्तों, इसी संदेश के साथ कार्यक्रम पहल आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे सुरभि कार्यक्रम। सुरभि कार्यक्रम के अंतर्गत हमने चर्चा है और पहल के विषय में बातें की। आप सुन रहे आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलो हर्ट्ज पर, और ये प्रसारण आप सुन पा रहे हैं न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी। तो दोस्तों, घड़ी की सुई बता रही है कि अब मुझे आप सभी से इजाजत लेने का वक्त आ चुका है, लेकिन जाते जाते आप सभी के लिए एक मधुर तराना छोड़े जाती हूँ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं।

आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 469 हो गई है और 1545 लोग लापता हैं। भोटे कोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव की आशंका है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति और सलामती का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें भारत की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि गंडक नदी के जलस्तर में कल से गिरावट आ रही है।
1: गंडक नदी के पूरे प्रवाह में अभी जल स्तर भी ऊंचा नहीं था, बल्कि सामान्य से भी थोड़ा कम था। इसलिए जो भी पानी संभावित था या जो आया, उससे बहुत ज्यादा भयावह स्थिति नहीं बनी।
0: एहतियात के तौर पर गंडक नदी से प्रभावित सभी 8 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। इस बीच सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें भाकरा नांगल बांध की दीवार 1.77 इंच झुकने का दावा किया गया है। वीडियो में कहा गया है कि बांध में दरार आने से दिल्ली सहित कई शहरों में बाढ़ आ सकती है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि बांध के तनाव, खिंचाव, छिद्र दाब और रिसाव के सभी मापदंड निर्धारित अनुमेय सीमाओं के भीतर है और बांध पूरी तरह सुरक्षित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत तथा अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को सुलभ बना रही है। महाराष्ट्र के नाशिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस आज सुबह दिल्ली पहुंची। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों में नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू की है। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज मामूली बढ़त देखी गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 159 अंक बढ़कर 77,093 पर और निफ्टी 15 अंक बढ़कर 24,106 पर पहुंच गया। भारत के वेलविन सेंथिल कुमार कल रात स्क्वाश सेमीफाइनल में भारत के ही वीर चोटरानी को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में पहुंच गए। फाइनल में आज रात वेलविन का मुकाबला हंगरी के खिलाड़ी बालास फारकस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनधन योजना की वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हुई। सीमा के दोनों ओर 1500 से अधिक लोग लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, नेपाल में 290 भारतीय नागरिक अब भी संपर्क से बाहर, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव अभियान जारी। चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में फिर बाढ़ की चेतावनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर और भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में आज रात फाइनल में हंगरी के बालास फारकाश से मुकाबला करेंगे।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को सुलभ बना रही है। योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हो गई है और सीमा के दोनों तरफ 1545 लोग लापता है। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने प्रभावित जिलों में 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। एक रिपोर्ट।
2: भोटेकोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव की आशंका है। इससे बचाव कार्यों में बाधा आ सकती है। इस बीच आज चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में बाढ़ की नई चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने त्रिशूली क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया है। नेपाल पुलिस ने बताया कि तिब्बत की ओर स्थित एक बांध फिर टूट गया है। वहां के निवासियों और सुरक्षा कर्मियों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में फंसे 290 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उनका पता लगाने और सुरक्षित निकालने के प्रयास जारी हैं। खोज और बचाव कार्यों में सहायता के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात कर उन्हें सहायता का आश्वासन दिया। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल अमेरिका की उप विदेश मंत्री एलिसन हुकर से टेलीफोन पर बातचीत की। अमेरिका ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 5 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है। श्रीलंका ने भी नेपाल को 10 लाख अमेरिकी डॉलर की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। इस बीच नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद बिहार में गंडक नदी से बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। बुधवार रात गंडक नदी के जल प्रवाह में बढ़ोतरी के बाद अब इसमें लगातार कमी दर्ज की जा रही है। उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि फिलहाल गंडक नदी में जल प्रवाह सामान्य है। उन्होंने कहा कि नेपाल की भोटेकोशी, त्रिशूली और नारायणी नदियों से होते हुए पानी के गंडक तक पहुंचने के दौरान जल प्रवाह की गति कम हुई है, जिससे बिहार में इसका प्रभाव भी कम हो गया है। श्री चौधरी ने बताया कि एहतियात के तौर पर गंडक नदी से प्रभावित सभी 8 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। जल संसाधन विभाग की टीमें तटबंधों की 24 घंटे पेट्रोलिंग और निगरानी कर रही हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें भाखड़ा नांगल बांध की दीवार 1.77 इंच झुकने का दावा किया गया है। वीडियो में कहा गया है कि बांध में दरार आने से दिल्ली सहित कई शहरों में बाढ़ आ सकती है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि बांध के तनाव, खिंचाव, छिद्र दाब और रिसाव के सभी मापदंड निर्धारित सीमाओं के भीतर हैं और बांध पूरी तरह सुरक्षित है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहें। X@AIR News हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। एक रिपोर्ट।
5: वित्त मंत्री शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत अमेरिका व्यापार तथा निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीमती सीतारामन शिकागो विश्वविद्यालय के पोल्सकी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का दौरा करेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। एशविले में सुश्री

0: सीतारामन की अध्यक्षता में आयोजित G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेफ के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे।
2: अपनी 2 दिनों की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताशकंद में शास्त्री मेमोरियल जाने की उम्मीद है। ताशकंद शहर में शास्त्री स्ट्रीट पर भारत के तीसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के सम्मान में एक कांसे की प्रतिमा स्थापित की गई थी। 1976 में शुरू हुए इस मेमोरियल को स्थानीय उज्बेक मूर्तिकार याकोव शापिरो ने डिजाइन किया था। ताशकंद आने वाले भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर जाने की भी उम्मीद है। ये सेंटर भारतीय साहित्य, खासतौर पर हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं के इतिहास और विकास पर एकेडमिक रिसर्च करता है और उज्बेकिस्तान और भारत के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की उत्तरी रेंज ने ISI समर्थित पाकिस्तान के एक जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिल्ली के एक दंपति को गिरफ्तार किया है। दंपति पर 2024 से पाकिस्तानी खुफिया एजेंट्स के लिए काम करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार दंपति कथित तौर पर पाकिस्तान के हैंडलर्स को सहायता प्रदान करता था। इसमें भारतीय सिम कार्ड खरीदना और उन्हें पाकिस्तान भेजना शामिल था। भारत में सिम कार्ड खरीदने के लिए दिल्ली के स्थानीय लोगों को भर्ती किया गया था। महाराष्ट्र के नाशिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस आज सुबह दिल्ली पहुंची। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों में नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू की है। चेन्नई, कोलकाता, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, वाराणसी, लखनऊ, पटना, चंडीगढ़, जम्मू और अमृतसर जैसे अन्य प्रमुख उपभोग केंद्रों तक भी प्याज की आपूर्ति की जा रही है। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। भारत में 7 स्थानों पर 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर संचालित हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 8.78 गीगावाट है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार 9 अतिरिक्त रिएक्टर निर्माणाधीन हैं। परमाणु ऊर्जा भारत के विकास पथ का एक महत्वपूर्ण घटक बनकर उभरी है, जो न केवल बिजली उत्पादन बल्कि स्वास्थ्य सेवा, कृषि और विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों में भी योगदान देती है। भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, @AIRNewsHindi को फॉलो करें और ताज़ा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रक्षा बंधन का त्योहार आज देश भर में मनाया जा रहा है।
4: बहनों ने भाई की तराई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में विभिन्न स्कूलों और संगठनों में रक्षाबंधन का पर्व मनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि रक्षाबंधन का महत्व भाई बहन के रिश्ते से कहीं आगे है। उन्होंने कहा कि राखी का पवित्र धागा परिवार के सदस्यों, मित्रों और यहाँ तक कि पेड़ों को भी बांधा जा सकता है, जो प्रेम और देखभाल के बंधन का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए बच्चों से पौधों और पेड़ों की देखभाल करने का भी आग्रह किया। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने कहा कि रक्षाबंधन प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के सुंदर बंधन का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये त्योहार सभी के बीच स्नेह और सद्भाव के बंधन को मजबूत करने तथा खुशहाली और समृद्धि का पर्व है। पंजाब में जेल

0: विभाग ने आज कैदियों को भाई बहनों के बीच प्रेम और सम्मान का त्यौहार रक्षाबंधन मनाने की अनुमति दी है। विभाग ने सुरक्षा संबंधी नियमों का ध्यान रखे जाने की पूरी व्यवस्था की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता महात्मा अयंकाली की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि महात्मा अयंकाली ने अपना जीवन शोषितों के अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष करने में समर्पित कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी महात्मा अयंकाली और श्री नारायण गुरु की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि महात्मा अयंकाली को एक अग्रणी समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया जाता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री नारायण गुरु की आध्यात्मिक समझ और समानता तथा मानवीय गरिमा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने लोगों को भेदभाव से ऊपर उठाया। मौसम विभाग ने उड़ीसा और बिहार में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। अगले दो दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज हवाओं के साथ आंधी की संभावना है। कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी कल तक ऐसे ही मौसम का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 1 सितंबर तक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी है। भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार आज रात पीएसए बुडापेस्ट स्क्वॉश ओपन फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालास फारकाश से मुकाबला करेंगे। कल रात सेमीफाइनल में सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 2026 डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। प्रतियोगिता अगले महीने ब्रसल्स में आयोजित होगी। नीरज ने रैंकिंग में 12 अंक हासिल किए। उन्होंने जून में दोहा मीट में 85.69 मीटर भाला फेंक कर चौथा स्थान हासिल किया था। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में लुसानी मीट में 88.05 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल जर्मनी को 3-1 से हराकर FIH विश्व कप में 5वां स्थान हासिल किया। पिछले 52 वर्षों में ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 1974 में हुए पहले विश्व कप में टीम चौथे स्थान पर रही थी। इस प्रदर्शन से अगले महीने जापान में होने वाले एशियाई खेलों से पहले टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनधन योजना की वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हुई। सीमा के दोनों ओर 1500 से अधिक लोग लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, नेपाल में 290 भारतीय नागरिक अब भी संपर्क से बाहर। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव अभियान जारी। चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में फिर बाढ़ की चेतावनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमरीका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार का पीएसए बुडापेस्ट स्क्वॉश ओपन में आज रात फाइनल में हंगरी के बालास फारकाश से मुकाबला। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी कोलकाता अनुष्ठान सुनछेन संचयिता प्रचार तरंगे মিডিয়াম ওয়েভে 297.6 মিটার অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টজে। এখন শুনবেন বেহালা রাগ সুত সারং, শিল্পী দেবাশিস চন্দ। শিল্পীকে তবলায় সহযোগিতা করেছেন তরুণ রায়।

0: আকাশবাণী কলকাতা অনুষ্ঠান শুনছেন সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে মিডিয়াম ওয়েভে 297.6 মিটার অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টজে। এখন থেকে দ্বিতীয় অধিবেশনের শুরু। একটু পরে সংবাদ দিল্লি কেন্দ্র থেকে।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 538 हो गई है और सीमा के दोनों तरफ 1545 लोग लापता हैं। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। एक रिपोर्ट।
2: भोटे कोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव की आशंका है, इससे बचाव कार्यों में बाधा आ सकती है। इस बीच आज चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में बाढ़ की नई चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने त्रिशूली क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया है। नेपाल पुलिस ने बताया कि तिब्बत की ओर स्थित एक बांध फिर टूट गया है। वहां के निवासियों और सुरक्षा कर्मियों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नेपाल में बुधवार को अचानक आई त्रासदी के बाद 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पाया है जो अन्य देशों के नागरिक हैं। श्री जायसवाल ने आज नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि त्रिशूली एक जल विद्युत परियोजना में काम कर रहे 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित इलाकों से बचाया गया। उन्होंने कहा कि चीन की तरफ फंसे 96 भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से जमीन के रास्ते नेपाल पहुंच गए हैं और उन्हें वहां से निकालने के प्रयास जारी हैं। इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। श्री जायसवाल ने बताया कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष बनाया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि काठमांडू और पेचिंग में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों की स्थिति और उनकी सलामती के बारे में नई जानकारी दी है। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है। उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी मिलों से बाहर चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतों भी कम होने लगी हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए।

ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के अंतर्गत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ोयोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। एशविल में श्रीमती सीतारमन की अध्यक्षता में G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। महाराष्ट्र के नाशिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस आज सुबह दिल्ली पहुंची। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों में नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की उत्तरी रेंज ने ISI समर्थित पाकिस्तान के एक जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ कर दिल्ली के एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। दंपत्ति पर वर्ष 2024 से पाकिस्तानी खुफिया एजेंट्स के लिए काम करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार दंपत्ति कथित तौर पर पाकिस्तान के हैंडलर्स को सहायता प्रदान करता था। रक्षाबंधन का त्यौहार आज देश भर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में विभिन्न स्कूलों और संगठनों में रक्षाबंधन का पर्व मनाया। खेलों में भारत के वेलवन सेंथिल कुमार आज रात PSA बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकस से मुकाबला करेंगे। कल रात सेमीफाइनल में सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल है। आप इसे डिजिटल मोड पर भी सुन सकते हैं। फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम उर्वशी पूनम के संग। उर्वशी के अंतर्गत सुरुचि और सुरुचि के अंतर्गत आज मिठाइयों की बात हो जाए। अब वो भला क्यों? वो इसलिए क्योंकि आज है रक्षाबंधन, और रक्षाबंधन सिर्फ राखी बांधने का त्योहार नहीं है, मिठास वाला त्योहार है, इसलिए मिठाई तो बनती है ना। और जब मिठाई बनती है तो ऐसे में रस मलाई और मोती चूर के लड्डू की अगर बात हो जाए तो फिर क्या ही बात हो, है ना। और ये जो दोनों मिठाइयां हैं ना, ये बहुत लोकप्रिय और स्वादिष्ट मिठाइयां हैं जो त्योहारों और खास अवसरों पर परोसी जाती हैं, और उनमें से एक बेहद खास त्योहार आज है ही। इन दोनों के बारे में बातें होंगी, लेकिन उससे पहले खूबसूरत नगमा आप सबके लिए। सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए, क्योंकि

गीतकार हैं इंदिवर और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, आवाज सुमन कल्याणपुर की और फिल्म का नाम रेशम की डोरी। थोड़ी देर पहले मैंने रसमलाई की बात की थी, तो ये जो रसमलाई

है वो छेना यानी कि पनीर से बनने वाली एक मलाईदार मिठाई है, जिसे केसर और इलायची के स्वाद वाले गाढ़े दूध यानी कि रबड़ी में डुबोकर रखा जाता है। सामग्री की यदि मैं बात करूं तो फाड़ा हुआ दूध यानी कि छेना, फुल क्रीम दूध, चीनी, केसर, पिस्ता और बादाम। बनाने का तरीका भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ये खूबसूरत नगमा आप सब तक पहुंचाऊंगी। सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: बजकर 36 मिनट। और कुछ देर पहले मैं बातें कर रही थी रसमलाई के बारे में और सारी तैयारी हो चुकी थी, बस उसे बनाना ही था। तो दूध से छेना बनाकर उसकी छोटी छोटी चपटी लोइयां यानी कि बॉल्स बनाई जाती हैं। इन्हें चीनी की चाशनी में उबाला जाता है। इसके बाद इन्हें केसर इलायची युक्त ठंडे गाढ़े दूध में भिगो दिया जाता है और बस रसमलाई हो जाती है तैयार। सुनकर मुंह में पानी आ गया ना? तो चलिए, मेरे भी मुंह में पानी आ गया है। तो हम लोग बैठकर मन ही मन रस मलाई का आनंद उठाते हैं और साथ ही साथ एक खूबसूरत नगमे का भी। सुनते रहिए, साथ रहिए।

गीतकार हैं गुलशन बावरा और संगीतकार हैं आरडी बर्मन। आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले और फिल्म का नाम ये वादा रहा। और वादे के मुताबिक रसमलाई के बाद अब मोतीचूर के लड्डू की बारी है। मोतीचूर के लड्डू बेसन की बारीक बूंदियों को तलकर और चाशनी में मिलाकर बनाए जाते हैं। सामग्री की यदि मैं बात करूं तो बेसन, चीनी, पानी, देसी घी या फिर रिफाइंड ऑयल, इलायची पाउडर और तरबूजे के बीज यानी कि मगज। बनाने का तरीका भी बता ही देती हूं। बेसन का पतला घोल बनाकर बारीक बूंदी तली जाती है और इन बूंदियों को एक तार की चाशनी में पकाया जाता है। हल्का दरदरा पीसकर या ऐसे ही इसमें मेवे मिलाकर छोटे छोटे गोल लड्डू बांधे जाते हैं और लीजिए तैयार हो गए मोतीचूर के लड्डू।

गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं आर्य बर्मन। आवाज किशोर कुमार की और फिल्म का नाम हरे रामा हरे कृष्णा। फिलहाल 5:50 और इसी के साथ पूनम को दीजिए थोड़ी देर के लिए आगे, लौट कर फिर आऊंगी आप सबके लिए लेकर आऊंगी कार्यक्रम हिंदी वार्ता। वक्त होगा 6:10, तब तक के लिए आ गया नमस्कार। जाते जाते खूबसूरत नगमा आप सबके लिए, सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 538 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव दल नदी के किनारों और बस्तियों में जीवित बचे लोगों और बाढ़ में बह गए शवों की तलाश कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। अधिकारियों ने प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। भोटे कोशी नदी के उद्गम स्थल के पास बाढ़ के मलबे से बनी झील और तिब्बत के एक बांध के टूटने की खबर ने एक बार फिर बाढ़ की आशंका को बढ़ा दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज बताया कि नेपाल में बुधवार को अचानक बाढ़ त्रासदी के बाद 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में काम कर रहे 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित इलाकों से बचाया गया है। उन्होंने कहा कि चीन की तरफ फंसे 96 भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से जमीन के रास्ते नेपाल पहुंच गए हैं और उन्हें वहां से निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। भारत ने बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए 47 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री भेजी है। श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष बनाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की जिन्हें नेपाल से बचाया गया। ये तीर्थयात्री कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से काठमांडू पहुंचे थे और आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में नेपाली सेना और सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। सिक्किम सरकार नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। सरकार वहां फंसे सिक्किम निवासियों की सुरक्षा और कुशल क्षेम सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठा रही है। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है। उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी मिलों से बाहर चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी अब कम होने लगी हैं। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पाक्षिक चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी और उम्मीद है कि इस दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी का उत्पादन होगा। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की अनुमति दे दी है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। एशविल में श्रीमती सीतारामन की अध्यक्षता में G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षाबंधन का त्यौहार आज देशभर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में विभिन्न स्कूलों और संगठनों में रक्षाबंधन का पर्व मनाया। नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम का आज ओस्लो के अस्पताल में निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस वर्ष की शुरुआत में नॉर्वे की यात्रा के दौरान राजा हेराल्ड पंचम से अपनी मुलाकात को याद किया। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार आज रात PSA बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकश से मुकाबला करेंगे। कल रात सेमीफाइनल में सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया था। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Manoj Singh Rana. The death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 547, with 1,545 people still missing as rescue teams search riverbanks and isolated settlements for survivors and bodies swept downstream. Authorities have evacuated more than 800 people from affected districts and issued fresh warnings after a 5.1 magnitude earthquake struck southwestern China, raising fears of further flooding. India has launched a major rescue and relief operation. External Affairs Ministry spokesperson Ranadeep Jaiswal said that 320 Indian nationals remain uncontactable or are reportedly missing following the flash flood tragedy on Wednesday. He said around 100 people of Indian origin holding other nationalities also remain uncontactable. Addressing the media in New Delhi today, Mr. Jaiswal said that 63 Indian nationals working at the Trishuli 1 hydro power project were rescued from the affected area. He said another 96 Indian nationals who were stranded on the Chinese side have safely crossed into Nepal by land and efforts are underway to evacuate them. Mr. Jaiswal informed the media that 21 Indian nationals from Tamil Nadu who had arrived in Kathmandu from the flood-affected area yesterday have reached New Delhi this afternoon. On the Chinese side, Mr. Jaiswal said that around 400 Indian nationals are safe and in contact with their families. He said the Indian embassy in Beijing is coordinating with local authorities, team leaders and travel agents to facilitate their evacuation. Prime Minister Narendra Modi will visit the Central Asian country Uzbekistan tomorrow. He will be on a two-day visit to Tashkent. During the visit, the Prime Minister will hold delegation-level talks with the President of Uzbekistan, Mr. Shavkat Mirziyoyev, to further strengthen the strategic partnership between the two countries. The government has said that there is no shortage of sugar in the country and all necessary measures will be taken for adequate availability of sugar at reasonable prices. The Consumer Affairs Ministry said that ex-mill sugar prices have declined by around 20% in recent days, while retail sugar prices have also started coming down. The ministry said it has taken a series of proactive measures to ensure adequate availability of sugar and prevent artificial tightening of supplies in the domestic market. The government has been closely monitoring sugar prices, stocks and movement across the country. India's industrial output growth as measured by the Index of Industrial Production IIP expanded by 6.7% in July this year on an annual basis. The July data indicates that industrial activity continued to expand at a healthy pace, although the pace of growth moderated from the revised June level. The sharp upward revision in June's IIP

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल है। आप इसे डिजिटल मोड पर भी सुन सकते हैं। फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिंदी वार्ता पूनम के संग, और हिंदी वार्ता के अंतर्गत आज मैं बात कर रही हूं रक्षाबंधन के विषय में। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र प्रेम, सांस्कृतिक धरोहर और आधुनिक सामाजिक चेतना का महाउत्सव। भारतीय संस्कृति में पर्व केवल उत्सव मनाने का माध्यम नहीं है, बल्कि वे हमारे सामाजिक जीवन को सुदृढ़ करने, पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता लाने और मानवीय मूल्यों को जीवंत रखने के महत्वपूर्ण आधार हैं। इन्हीं पर्वों की श्रृंखला में श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला रक्षाबंधन एक ऐसा अद्वितीय पर्व है जो भाई और बहन के बीच के पवित्र, निष्कलंक और अगाध प्रेम का प्रतीक है। यह पर्व केवल एक धागे के बंधन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सुरक्षा, विश्वास, स्नेह और एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व की वो महान भावना है जो सदियों से भारतीय समाज की सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न अंग रही है। रक्षाबंधन के इतिहास और पौराणिक महत्व की जड़ें बहुत गहरी हैं। इस पर्व के उद्गम से जुड़ी कई कथाएं हिंदू पौराणिक ग्रंथों और इतिहास में मिलती है। सबसे प्रसिद्ध कथा देव और दानवों के युद्ध से जुड़ी है। माना जाता है कि जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध लंबा खिंच गया और देवता हारने लगे, तब देवराज इंद्र की पत्नी इंद्राणी यानी कि शची ने अपनी तपस्या और पवित्र संकल्प से एक रेशमी धागा तैयार किया और उसे इंद्र की दाहिनी कलाई पर बांध दिया। उस रक्षा सूत्र के प्रभाव से इंद्र और देवताओं को युद्ध में विजय प्राप्त हुई। तभी से युद्ध या संकट के समय अपनी रक्षा और विजय की कामना के लिए कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा शुरू हुई। महाभारत काल से जुड़ी कथाएं भी इस पर्व के महत्व को और अधिक विस्तार देती हैं। भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा इसका सबसे जीवंत

जब शिशुपाल के वध के समय श्री कृष्ण की उंगली कट गई और उससे रक्त बहने लगा, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्ला फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। उस रक्त की एक एक बूंद के ऋण को चुकाने के लिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वे हर संकट में उसकी रक्षा करेंगे।

रक्षा वचन को निभाया। ये कथा हमें सिखाती है कि रक्षाबंधन केवल भाई बहन के खून के रिश्ते तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उन सभी पवित्र संबंधों का आधार है जहां स्नेह और सम्मान की भावना प्रमुख होती है। इतिहास के पन्नों में भी रक्षाबंधन के कई प्रेरणादायी प्रसंग दर्ज हैं। मध्यकाल में चित्तौड़गढ़ की रानी कर्मावती ने जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के आक्रमण के समय अपनी और अपने राज्य की रक्षा का कोई उपाय नहीं देखा, तब उन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं ने एक मुस्लिम शासक होते हुए भी उससे राखी की लाज रखी और अपनी बहन की रक्षा के लिए अपनी सेना लेकर चित्तौड़ की ओर निकल पड़े। हालांकि वे समय पर नहीं पहुंच सके, लेकिन उनका यह कदम भाई बहन के रिश्ते की उस गरिमा को स्थापित करता है जो धर्म, जाति और सीमाओं के बंधनों से परे है। रक्षाबंधन के सांस्कृतिक और पारंपरिक स्वरूप की यदि मैं बात करूं तो रक्षाबंधन का यह पावन पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा को आता है, जिसे सावन पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये वो समय होता है जब प्रकृति अपने सबसे सुंदर और जीवंत रूप में होती है। चारों ओर हरियाली छाई होती है, रिमझिम फुहारे मन को प्रफुल्लित करती हैं और मौसम अत्यंत सुहावना होता है। इस दिन का आरंभ सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने के साथ होता है। बहनें अपने भाइयों के लिए थाली सजाती हैं। उस थाली में रोली, अक्षत, दिया, मिठाई और सबसे महत्वपूर्ण राखी या फिर रक्षा सूत्र होता है। इस अनुष्ठान में बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं। उसकी लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अक्षत लगाती हैं और दाहिने हाथ की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। इसके बाद वे भाई का मुंह मीठा कराती हैं। बदले में भाई अपनी बहन को उपहार, वस्त्र या नगद राशि देकर उसकी रक्षा करने का संकल्प लेता है। ये परंपरा केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये दोनों के बीच के आत्मीय मिलन का ऐसा अवसर है जहां गिले शिकवे दूर होते हैं और पुरानी यादें ताजा होती हैं। समय के साथ समाज में बदलाव आया है और इस बदलाव का असर रक्षाबंधन के स्वरूप पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आज ये पर्व केवल भाई और बहन तक सीमित नहीं रह गया, आधुनिक युग में इस पावन पर्व का दायरा बहुत व्यापक हो चुका है। अब बहनें केवल अपने भाइयों को ही राखी नहीं बांधती, बल्कि जहां भाई नहीं है वहां बहनें एक दूसरे को राखी बांधकर अपने स्नेह का इजहार करती हैं। इसके अलावा देश की सीमाओं पर तैनात हमारे वीर सैनिक जो अपने घरों से दूर रहकर देश की रक्षा करते हैं, उन्हें देश के कोने कोने से बहनें राखियां भेजती हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि पूरा देश एक परिवार की तरह जुड़ा हुआ है। आज के समय में रक्षाबंधन को पर्यावरण संरक्षण के रूप में भी मनाया जाने लगा है। कई जगहों पर लोग पेड़ों को राखी बांधकर उनकी रक्षा करने का संकल्प लेते हैं, जिसे वृक्ष रक्षाबंधन कहा जाता है। यह पर्यावरण के प्रति बढ़ती जागरूकता का एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण है। इसी प्रकार समाज के वंचित वर्गों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों में जाकर भी लोग इस पर्व को मनाते हैं, जो करुणा, समता और सामाजिक बंधुत्व का संदेश देता है। मनोविज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो भाई बहन का रिश्ता जीवन का पहला सहकर्मी और मित्र जैसा होता है। बचपन की लड़ाई, झगड़ों, खिलौनों के बंटवारे और माता पिता से छिपकर की गई शरारतों से लेकर युवावस्था तक के सुख दुख में भाई बहन एक दूसरे के सबसे बड़े संबल होते हैं। यह रिश्ता अंतर्मन के उस विश्वास पर टिका होता है जहां कोई मुखौटा नहीं होता है। सामाजिक रूप से यह पर्व समाज में सुरक्षा की भावना को मजबूत करता है। रक्षाबंधन केवल एक धागा नहीं, बल्कि दो दिलों की अटूट डोर है जो समय की दूरियों और परिस्थितियों की बाधाओं को पार कर हमेशा मजबूत बनी रहती है। ये हमें हमारी संस्कृति की उन महान परंपराओं से जोड़ता है जो मनुष्य को

0: से जोड़ना सिखाती है। आधुनिकता की दौड़ में जहां आज मानवीय रिश्ते कमजोर हो रहे हैं और संवेदनशीलता घटती जा रही है, वहां रक्षाबंधन जैसे पर्व हमें अपनों के करीब लाने, रिश्तों की गर्माहट को महसूस करने और प्रेम के बंधन को और अधिक मजबूत करने का अवसर प्रदान करते हैं। ये पर्व हमें ये याद दिलाता है कि जीवन की भाग दौड़ में भी रिश्तों की मिठास और एक दूसरे का साथ ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। आइए इस रक्षाबंधन पर हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम न केवल अपने परिवार के सदस्यों बल्कि समाज के हर कमजोर और जरूरतमंद व्यक्ति के अधिकार और सम्मान की रक्षा करेंगे, ताकि ये पावन पर्व अपनी सार्थकता को और अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचा सके। फिलहाल आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदी वार्ता पूनम के संग, जिसके अंतर्गत आज मैं बात कर रही थी रक्षाबंधन के विषय में। आपसे फिर मुलाकात होगी 6:30 पर कार्यक्रम गुलगुलशन लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। तब तक
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। जनधन योजना देशस्य आर्थिक सशक्तिकरणे क्रांतिकारी भूमिकां निर्वहतीति प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः वक्तव्यम्। नेपाल तिब्बतयोः भीषणाप्लावेन मृतकानां संख्या 38.5% यावत् अभवत्। 1500+ जनाः विलीनाः। नेपाले 90+ भारतीयाः असंपर्किताः, मन्त्रालयेन आपदुद्धरण कार्याणि च तीव्रीकृतानि। चीने 15.1 परिमाणमितं भूकंपानन्तरं नेपाले नूतन जलप्लावन संकटस्य सूचना। वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन अद्य 6-दिवसीय प्रवासाय यूएस प्रस्थिता। अपि च पीएसए बुडापेस्ट ओपन प्रतियोगितायाः अंतिम स्पर्धायां अद्य रात्रौ भारतस्य वेलावन सेंथिल कुमारः हंगरी देशस्य बालाज फार्कस वर्येण सह स्पर्धिष्यते। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री जनधन योजनायाः 12 वर्षाणि पूर्णतां गतानि। देशे वित्तीय समावेशनस्य परिदृश्य परिवर्तन दिशि अयं हि कश्चन महत्वपूर्णः पदक्रमः वर्तते। 14-2000 वर्षे अस्मिन्नेव दिने प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना एषा योजना समारब्धा। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् विगतेषु 12 वर्षेषु जनधन योजनायाः अभूतपूर्व परिवर्तनकारिणां परिणामानां प्रभावः अद्भुतः अस्ति। सामाजिकान्तर्जालपटले श्रीमोदी अलिखत् यत् जनधन योजना वित्तीय समावेशनं संवर्धयितुं, देशस्य जनान् शक्तिकर्तुं च महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहति। प्रधानमंत्री जनधन योजनायाः अन्तर्गतं अधुनावधि 69 कोटितोपि अधिकाः लेखाः उद्घाटिताः। अत्र लेखासु आहत्य 17,000+ 3,00,000 रूप्यकाणि स्थापितानि सन्ति। इयं योजना विश्वस्य बृहत्तमा वित्तीय समावेश परिकल्पना रूपेण विद्यते। एषा योजना सर्वेभ्यः भारतीयेभ्यः बैंक प्रवेशं सुकरं करोति। भ्रातृभगिन्योः अगाध स्नेह सम्बन्धस्य प्रतीकभूतं रक्षाबंधन पर्व अद्य समग्र देशे महोल्लासेन आचर्यते। अस्मिन् पावनावसरे राष्ट्रपतिना, उपराष्ट्रपतिना अथ च प्रधानमन्त्रिणा अद्य नवदिल्ल्यां विभिन्नानां विद्यालयानां संस्थानां च छात्रैः बालकैश्च सह इदं पर्व सोत्साहं समनुष्ठितम्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वः उज्बेकिस्तानस्य 2-दिवसीय प्रवासाय ताश्कंद नगरं गमिष्यति। यात्रावधौ प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तानस्य राष्ट्रपतिना शौकत मिर्ज़ियोयेव वर्येण सह उच्चस्तरीय वार्तां करिष्यति। अस्याः वार्तायाः मुख्यम् उद्देश्यं भारत उज्बेकिस्तानयोः रणनीतिक सम्बन्धान् नूतनाम् उच्चतां

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल है। आप इसे डिजिटल मोड पर भी सुन सकते हैं। फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलगुलशन पूनम के संग।

6:38 और कुड़ियों का जमाना तो हमेशा ही रहता है। गीतकार हैं देव कोहली और संगीतकार हैं राम लक्ष्मण, आवाजें लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम।

फिलहाल एक सूचना। 137वीं डाक एवं पेंशन अदालत। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्किल की अध्यक्षता में दिनांक 22/9/2026 को पूर्वान्न 11 बजे मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल योगायोग भवन P36 सीआर एवेन्यू कोलकाता 700012 में गूगल मीट के माध्यम से 137वीं डाक एवं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की डाक सेवाओं एवं डाक घरों से पेंशन लेने वाले पेंशन भोगियों के पेंशन दावे से संबंधित शिकायतों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकारियों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित पूर्ण ब्यौरों का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री एस सी दास, सहायक निदेशक, डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल P36 सी आर एवेन्यू कोलकाता 700012 के नाम से भेजी जाए और ये डाक या ईमेल आईडी cpmg_wb@indiapost.gov.in या फिर adpgcowb@gmail.com या फिर pg.wb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 31 अगस्त 2026 तक या उससे पहले पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि वे निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट के माध्यम से डाक एवं पेंशन अदालत में उपस्थित हों। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा से दूरभाष संख्या 03322120250221206 या फिर 22120500 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक या फिर पेंशन अदालत के आवेदनों या फिर ईमेल पर डाक अदालत या फिर पेंशन अदालत शब्द लिखा होना चाहिए। डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकार से संबंधित विधिक मामलों एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। सूचना समाप्त हुई।

गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन और आवाजें हेमलता और जसपाल सिंह और फिल्म का नाम नदिया के पार। फिलहाल कुमार शानू और अलका याग्निक की खूबसूरत आवाज में खूबसूरत सा नगमा आप सबके लिए। सुनते रहिए, साथ रहिए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव दल लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। अधिकारियों ने प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नेपाल में बुधवार को अचानक बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो सका है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाके से नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
1: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि चीन की तरफ फंसे 96 भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से जमीन के रास्ते नेपाल पहुंच गए हैं और उन्हें वहां से निकालने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। भारत ने बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष बनाया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नेपाल से सुरक्षित वापस आए तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। ये तीर्थयात्री कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से काठमांडू पहुंचे थे और आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर ने नेपाली सेना और सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पाक्षिक चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी। इस दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी उत्पादन की संभावना है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की अनुमति दे दी है। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर 1800-1804747 के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव ईमेल examreformstaskforce@dopt.gov.in के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के अंतर्गत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। श्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल है। आप इसे डिजिटल मोड पर भी सुन सकते हैं। फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दर्पण पूनम के संग। दर्पण के अंतर्गत एक नजर के अंतर्गत रक्षा बंधन। भारतीय संस्कृति में त्योहारों का विशेष स्थान है और इनमें रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के पवित्र रिश्ते की अटूट मिसाल है। हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला यह पर्व आपसी स्नेह, विश्वास और सुरक्षा के संकल्प का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उनकी कलाई पर रेशम का धागा यानी राखी बांधती हैं, उनका मुंह मीठा कराती हैं। इसके बदले में भाई अपनी बहनों को उपहार देकर जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। समय के साथ इस त्योहार के स्वरूप में भी सकारात्मक बदलाव आया है। आज ये केवल पारंपरिक भाई बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं है, बल्कि बहनें एक दूसरे को सिस्टर बॉन्ड, सैनिक भाइयों को सरहद पर और पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ों को भी रक्षा सूत्र बांधकर इस पर्व का दायरा बढ़ा रही हैं। रक्षाबंधन का यह पावन धागा जाति, धर्म और साथ ही साथ धर्म और दूरियों की सीमाओं को मिटाकर समाज में प्रेम, भाईचारे और सुरक्षा की भावना को मजबूत करता है। फिलहाल 7:32 एक नजर के अंतर्गत फिलहाल इतना ही।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: सात बजकर 38 मिनट फिलहाल वक्त है विधि विधान और समाधान का, जिसके अंतर्गत आज मैं बात करने वाली हूं मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 के बारे में। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2021 में लाया गया मॉडल टेनेंसी एक्ट भारत में किराए पर मकान देने और लेने की व्यवस्था को पारदर्शी, निष्पक्ष और आधुनिक बनाने की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य मकान मालिकों और किरायेदारों के बीच के विवादों को कम करना और किराए के बाजार को कानूनी रूप से मजबूत करना है। इस कानून के तहत मकान मालिक और किरायेदार

0: बीच लिखित समझौता होना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसमें किराए की राशि, सुरक्षा राशि और अन्य नियम स्पष्ट रूप से दर्ज होते हैं। साथ ही विवादों के त्वरित समाधान के लिए जिला स्तर पर रेंट अथॉरिटी और रेंट ट्रिब्यूनल के गठन का प्रावधान किया गया है। यह कानून मकान मालिकों को समय पर किराया मिलने की सुरक्षा देता है, तो दूसरी ओर किरायेदारों को भी अनुचित तरीके से बेदखल किए जाने से बचाता है। 7:39 विधि विधान और समाधान के अंतर्गत फिलहाल इतना ही।
1: अभी अलविदा मत कहो।

गीतकार हैं हसन कमल और संगीतकार हैं रवि, आवाज महेंद्र कपूर की और फिल्म का नाम निकाह। फिलहाल 7:46 और वक्त है एक और खूबसूरत नगमे का। सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए।

गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं आर्डी बमन, आवाज किशोर कुमार की और फिल्म का नाम कालिया। अगला नगमा लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज में।

7:57 और अब पूनम के जाने का समय है एकदम करीब। तो आज के लिए दीजिए पूनम को आज्ञा, जाते जाते खूबसूरत नगमा आप सबके लिए। सुनते रहिए, साथ रहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए तीसरी उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी। विदेश मंत्रालय ने कहा 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हुई। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। सरकारी उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ी। मिलों से सीधे प्राप्त चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट। देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष जुलाई में 6.7% रही। और बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में आज रात भारत के वेलवन सेंथिल कुमार का सामना हंगरी के बालाज फारकश से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है कि नेपाल में बुधवार को अचानक बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से कोई संपर्क नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाकों से नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
1: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा आप 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
0: इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। 10 टन मानवीय सहायता लेकर तीसरी उड़ान काठमांडू के लिए रवाना हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस उड़ान में डॉक्टरों, पैरामेडिक्स और टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रेकी टीम के 11 सदस्य भी शामिल हैं। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव दल लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिम चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद बाढ़ की आशंका फिर बढ़ गई है। अधिकारियों ने प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। भोटे कोशी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण त्रिशूली क्षेत्र के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का आदेश दिया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नेपाल से सुरक्षित वापस आए तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। ये तीर्थयात्री कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से काठमांडू पहुंचे थे और आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर ने नेपाली सेना और सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की और हर संभव सहायता देने की पेशकश की।
2: They told me about exactly what happened to them, how the floods came.
3: उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ असल में क्या हुआ था और बाढ़ कैसे आई थी। वे बहुत आभारी हैं, खासकर नेपाल सेना के, जिन्होंने उस बेहद मुश्किल जगह से निकालने के लिए इतना बड़ा प्रयास किया। इसलिए अभी हमारा प्रयास लोगों की राहत और बचाव कार्यों में नेपाल की मदद करने का है। आज सुबह ही मैंने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की है। हमने उन्हें कई तरह की सहायता की पेशकश भी की है।
2: We have given them range of support offers.
0: सिक्किम सरकार नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार वहां फंसे सिक्किम निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठा रही है।
4: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तवांगोले ने सिक्किम के 8 निवासियों से फोन पर बात की। जानकारी मिली है कि सभी 8 लोग सुरक्षित हैं। फंसे हुए सिक्किम का निवासियों के लिए सिक्किम सरकार ने कल नेपाल फ्लैश फ्लड टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स को स्थिति से प्रभावित सिक्किम के नागरिकों के लिए आवश्यक सहायता के समग्र समन्वय, निगरानी और सुविधा प्रदान करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। टास्क फोर्स भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ नियमित समन्वय बनाए हुए है और संबंधित सिक्किम निवासियों तथा उनका परिवारों के साथ भी लगातार संपर्क में है। मोइनक चटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कराती है। कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल

0: लेती है। आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला? मुझे तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
1: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को बना रही है। योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्ज़ियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे।
4: भारत और उज़्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज़्बेकिस्तान।
2: सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं।
5: पाक्षिक कोटा के अंतर्गत चीनी मिलों को आवंटित मात्रा से कम 40% चीनी पहले सप्ताह में और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। मंत्रालय के अनुसार नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी। अक्टूबर महीने के दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी उत्पादन होने की उम्मीद है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की भी अनुमति दी है, जिससे नए सीजन का उत्पादन जल्द से जल्द घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके। नवंबर में चीनी का उत्पादन लगभग 45 लाख टन रहने की उम्मीद है, जिससे घरेलू खपत के लिए चीनी की अतिरिक्त आपूर्ति में पर्याप्त वृद्धि होगी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के किसानों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार उनके हितों से कोई समझौता नहीं करेगी और किसी भी देश के साथ किए गए हर समझौते में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। अमृतसर जिले के बाबा बकाला में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दल ये झूठा प्रचार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार किसानों के हितों के खिलाफ समझौते कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कृषि मंत्री ने विशेष रूप से पंजाब सरकार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू न करने के लिए जिम्मेदार ठहराया।
6: भारत सरकार ने जो योजना बनाई किसानों की आमदनी बढ़ाने की, आय बढ़ाने की, हम पंजाब में भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी भ्रष्ट सरकार के कारण हमारी कोशिशें सफल नहीं हो रही। पंजाब के कृषि के लिए एक नया रोड मैप टॉप के साइंटिस्टों की टीम बनाएगी। हम पंजाब की कृषि की दशा बदलेंगे, दिशा बदलेंगे और किसान की हालत बदलेंगे।
2: परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्चस्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर 1800184747 के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव ईमेल examreformstaskforce@dopt.gov.in के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: परीक्षा के संचालन, सुरक्षा, जवाबदेही और संस्थागत व्यवस्थाओं के अलावा परीक्षा में अनुचित साधनों का पता लगाने, रोकथाम करने और उनके समाधान सहित अन्य संबंधित क्षेत्रों के बारे में सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। कार्यबल संस्थागत

0: प्रणालियों और प्रक्रियाओं को मजबूत करने, परीक्षा की निष्पक्षता, उपयुक्त तकनीकों को लागू करने और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने के उपायों की जांच कर रहा है। इसका उद्देश्य मजबूत, सुरक्षित, पारदर्शी, न्यायसंगत और भविष्य के लिए तैयार सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली विकसित करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षाओं सहित सार्वजनिक परीक्षाओं के सुगम संचालन और प्रशासन से संबंधित व्यापक सुधारों की जांच के लिए प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में कार्यबल का गठन किया गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
1: इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उत्तर कुंजी ugcnet.nta.nic.in पर उपलब्ध है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस मालदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इस महीने 60 नवजात शिशुओं की मौत की खबर पर जारी किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के सरकारी स्कूल में पिछले 2 वर्षों से 6 से 8 कक्षा के विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन नहीं परोसे जाने के मामले में मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने संज्ञान लेते हुए 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधियों में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। हालांकि इस अवधि में विकास की गति जून के संशोधित स्तर से कम रही। एक रिपोर्ट।
3: जून में IIP वृद्धि दर 7.3% से बढ़कर 8.8% पहुंच गई थी, जो यह भी संकेत देती है कि जुलाई तिमाही में प्रवेश करने वाली औद्योगिक गति शुरू में अनुमान से अधिक मजबूत रही। आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार IIP सूचकांक में सबसे अधिक महत्व रखने वाले विनिर्माण क्षेत्र में जुलाई में 7.3% की वृद्धि हुई, जबकि बिजली और गैस की आपूर्ति में 8.7% की वृद्धि दर्ज हुई। जल आपूर्ति, सीवरेज और अपिष्ट प्रबंधन में 7.4% की वृद्धि हुई। हालांकि खनन क्षेत्र पिछले महीने 0.9% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए पिछड़ गया। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। एशविल में श्रीमती सीतारमण की अध्यक्षता में G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा आज पारंपरिक छड़ी मुबारक की रस्मों के साथ संपन्न हो गई। ये यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी। इस वर्ष 4,80,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए। भारत के विल्वन सेंथिल कुमार आज रात बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकश से खेलेंगे। सेमीफाइनल में कल सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया था। नॉर्वे के सम्राट हेराल्ड पंचम का आज ओस्लो में निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस वर्ष की शुरुआत में नॉर्वे की यात्रा के दौरान सम्राट हेराल्ड पंचम से अपनी मुलाकात को याद किया। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मैदानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश हुई। कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए 3री उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी। विदेश मंत्रालय ने कहा 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हुई। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। सरकारी उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ी। मिलों से सीधे प्राप्त चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट। देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष जुलाई में 6.7% रही और बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में आज रात भारत के वेलवन संथिल कुमार का सामना

0: मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हुई। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत की मांग की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तत्काल बातचीत से इनकार किया। और बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के फाइनल में आज रात भारत के बेलवन सेंथिल कुमार का सामना हंगरी के बालाज फारकस से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नेपाल में बुधवार को अचानक बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाके से नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
1: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा आप 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए 47 टन से ज्यादा आपातकालीन राहत सामग्री भेजी है। श्री जायसवाल ने कहा कि नेपाल के अनुरोध पर भारत टनल रेस्क्यू टीम भेजने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने बताया कि एक मेडिकल टीम भी भेजी जा रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में नियंत्रण कक्ष बनाया है जो 24 घंटे काम कर रहा है। इस बीच 10 टन मानवीय सहायता लेकर तीसरी उड़ान काठमांडू के लिए रवाना हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस उड़ान में डॉक्टरों, पैरामेडिक्स और टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रेकी टीम के 11 सदस्य भी शामिल हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नेपाल से सुरक्षित वापस आए तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। ये तीर्थयात्री कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से काठमांडू पहुंचे थे और आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर ने नेपाली सेना और सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने भारत में सुगम वापसी सुनिश्चित करने के लिए काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास की भी सराहना की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि भारत सरकार बाढ़ के बाद राहत और बचाव कार्यों में नेपाल की सहायता कर रही है। उन्होंने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की और उन्हें हर संभव सहायता देने की पेशकश की।
2: They told me about exactly what happened to them, how the floods came.
3: उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ असल में क्या हुआ था और बाढ़ कैसे आई थी। वे बहुत आभारी हैं, खासकर नेपाल सेना के, जिन्होंने उस बेहद मुश्किल जगह से निकालने के लिए इतना बड़ा प्रयास किया। इसलिए अभी हमारा प्रयास लोगों की राहत और बचाव कार्यों में नेपाल की मदद करने का है। आज सुबह ही मैंने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की है। हमने उन्हें कई तरह की सहायता की पेशकश भी की है।
2: We have given them range of support offers.
0: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने तमिलनाडु के वरिष्ठ मंत्रियों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। उन्होंने भारतीय नागरिकों के लिए चलाए जा रहे राहत और सहायता कार्यों के बारे में आधव अर्जुन के नेतृत्व वाले प्रतिनिधि मंडल को जानकारी दी। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1500 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव दल लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। अधिकारियों ने प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। भोटे कोशी नदी के उद्गम स्थल के पास बाढ़ के मलबे से बनी झील और तिब्बत के एक बांध टूटने की खबर ने एक बार फिर से बाढ़ की आशंका को बढ़ा दिया है। नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण त्रिशूली क्षेत्र के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया गया है। त्रिशूली और रसुआ के बीच सड़क निर्माण कार्य रोक दिया गया है। स्थानीय निवासियों ने बताया है कि बाढ़ का पानी भर जाने से त्रिशूली और धोबी नदी क्षेत्रों में उनके घर, दुकानें और सामान बह गए हैं। दुर्गम क्षेत्रों और प्रतिकूल मौसम के कारण राहत और बचाव कार्यों में बाधा आ रही है। श्रीलंका ने कहा है कि वह नेपाल को 10 लाख अमरीकी डॉलर की आर्थिक मदद देगा। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है और 1000 से ज्यादा लोग लापता हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने कहा कि जरूरत की

घड़ी में श्रीलंका नेपाल के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के चार

0: उज्बेकिस्तान की चौथी यात्रा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री कार्यालय ने बयान में कहा कि दो दिवसीय यात्रा के दौरान श्री मोदी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जी योयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। दोनों नेता व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे और भावी राह के लिए एजेंडा तय करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दो दिवसीय यात्रा पर बिश्केक जाएंगे। यह शिखर सम्मेलन संगठन की 25वीं वर्षगांठ का प्रतीक है, जिसका भारत 2017 से पूर्ण सदस्य रहा है। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे, जहां वे इस मंच पर सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर के मामलों में भारत की प्राथमिकताओं पर बल देंगे। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो के प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अगर अमेरिका अपना रुख बदलता है और दबाव बनाना छोड़ देता है तो अमेरिका के साथ कूटनीतिक संबंध फिर से शुरू हो सकते हैं। एक रिपोर्ट।
2: सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अराग़ची ने कहा कि अमेरिका को विश्वास कायम करना चाहिए, सम्मानपूर्वक बात करनी चाहिए, हमारे अधिकारों को स्वीकार करना चाहिए और अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करना चाहिए। उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी के साथ हाल ही में हुई बातचीत को फलदायी और रचनात्मक बताया। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ तत्काल बातचीत से इनकार कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान अभी खत्म नहीं हुए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान गंभीर सैन्य और आर्थिक दबाव में है और उसकी क्षमताएं सीमित हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य के फिर से खुलने का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका ने ईरान के साथ अपना सैन्य संघर्ष समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका मुलाकात या किसी भी तरह की बातचीत की तलाश में नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ये भी कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य के संबंध में रूस का व्यवहार अब तक काफी अच्छा रहा है, लेकिन उन्होंने ईरान के प्रति किसी प्रकार की रूस की प्रतिबद्धता या कार्रवाई का उल्लेख नहीं किया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारत के वेलवन सेंथिल कुमार का मुकाबला अब से थोड़ी देर में पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकस से होगा। कल रात सेमीफाइनल में सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया। शतरंज खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड चेस टूर का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। वे यह खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। 21 वर्षीय प्रज्ञानंदा ने अमेरिका के सेंट लुइस में हुए फाइनल में फैबियानो कारुआना को 15-13 से हराकर यह खिताब जीता। भारत ने और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए तीसरी उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत की मांग की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तत्काल बातचीत से इनकार किया और बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के फाइनल में आज रात भारत के वेलवन सेंथिल कुमार का सामना हंगरी के बालाज फारकस से। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Renu Kataria with the World News. The headlines. India sends third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance to flood-hit Nepal. External Affairs Ministry says 320 Indian nationals remain uncontactable. Death toll in devastating Nepal-Tibet flash floods rises to 547. Over 1,500 people remain missing on both sides of border. Prime Minister Narendra Modi to embark on a 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan tomorrow. Iran seeks dialogue with Washington. US President Trump rules out immediate talks. And India's Vellavan Senthil Kumar to take on Hungary's Balázs Farkas in the final of PSA Budapest Squash Open tonight.

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नेपाल में बुधवार को अचानक आई बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाके से नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
1: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा आप 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
0: इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। 10 टन मानवीय सहायता लेकर तीसरी उड़ान काठमांडू के लिए रवाना हो गई है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी

0: उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर द्वारा भेजे जा सकते हैं। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के किसानों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार उनके हितों से कोई समझौता नहीं करेगी और किसी भी देश के साथ किए गए हर समझौते में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। अमृतसर जिले के बाबा बकाला में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दल यह झूठा प्रचार कर रहे हैं। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधि में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज भारत में यूरोपीय संघ के निवर्तमान राजदूत हर्वे डेल्फिन को विदाई दी। डॉक्टर जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत बनाने में निवर्तमान राजदूत के योगदान की सराहना की। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मैदानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश हुई। कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भारत के वेलवन सेल्थिन कुमार आज रात PSA बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकस से खेलेंगे। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। India has stepped up humanitarian assistance to Nepal affected by flash floods as the third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance has departed for Kathmandu. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar informed this in a social media post. The minister said that the assistance includes portable generator sets, dignity kits, food packets and water purification tablets. Dr. Jayashankar said that an 11-member team of doctors, paramedics and Reiki team for tunnel rescue operations is also on board. He also reiterated India's support to Nepal's ongoing relief and rescue efforts. Earlier, India had sent more than 47 tons of emergency relief supplies in two flights. Meanwhile, the death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 547, with 1,545 people still missing as rescue teams search riverbanks and isolated settlements for survivors and bodies swept downstream. Authorities have evacuated more than 800 people from affected districts and issued fresh warnings after a 5.1 magnitude earthquake struck southwestern China, raising fears of further flooding. India has launched a major rescue and relief operation. The Ministry of External Affairs has said that 320 Indian nationals remain uncontactable or are reportedly missing following the flash flood tragedy on Wednesday. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said around 100 people of Indian origin holding other nationalities also remain uncontactable. Addressing the media in New Delhi today, Mr. Jaiswal said that 63 Indian nationals working at Trishuli 1 hydropower project were rescued from the affected area. Mr. Jaiswal informed the media